FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार दिनांक 22 मई 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और

0: अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में आइए आप सुनते हैं राजा राम मोहन राय के विचार।
2: आपसी लड़ाई, झगड़े और विरोध उस समय सर उठाते हैं जब हम जात पात के बंधनों में जकड़े हों। जात पात के भेदभाव देश की एकता के लिए विष का काम करते हैं। जात पात के बंधन अभी तक हमारे हाथ पांव और गर्दनों में पड़े हैं। रंग, धर्म, भाषा और जात पात के भेदभाव को बीच में लाकर संसार की कोई भी कौम हमें आसानी से उकसा सकती है और हमारी एकता के बीच में दीवार खड़ी कर सकती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे देश की उन्नति पर पड़ता है। अगर हमें ऐसे समाज की बुनियाद डालना है जिसमें भारत के वासी आत्मनिर्भरता, आज़ादी और सुख का जीवन बिता सकें, तो हमें आपसी भेदभावों को मन से निकालना होगा। ये सारा संसार एक खुदा ने, ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए हमें चाहिए हम सब एक ईश्वर की पूजा करें और उसी पर विश्वास रखें। अलग अलग देवताओं की पूजा से हम मन की शांति और एकता के रास्ते नहीं पा सकते। हमें धर्म का ज्ञान करने के लिए किसी भी दूसरे माध्यम या गुरु का सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें धर्म का ज्ञान धार्मिक पुस्तकों को खुद पढ़कर हासिल करना चाहिए। देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है, हमारे कौमी जीवन की बुनियाद सामाजिक न्याय के उसूलों पर रखी जाए और महिलाएं हमारे समाज का एक अटूट अंग हैं। जब तक हमारे समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारा समाज, देश पुराने विचारों के अंधकार में डूबा हुआ है। इस समय ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को पुराने विचारों के इस अंधकार से निकालकर नए जमाने की रोशनी दिखाएं। हमें चाहिए कि अब तक चले आ रहे कुछ ऐसे पुराने रीति रिवाज जो इंसानियत के माथे पर धब्बा हैं, उनका विरोध करें। हमारे समाज में बिल्कुल छोटी उम्र में बच्चों की शादी करना और शादी में जात पात के उसूलों पर अड़ा रहना अब पुरानी बातें हैं और पुराने विचार हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा और सही स्थान दिलाना ही ज़रूरी नहीं है। हमारा काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। हमें महिलाओं को आदर, सम्मान और आज़ादी भी देनी चाहिए जिस पर उनका बुनियादी हक है।

0: विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने की आजादी होनी चाहिए। हमारा देश उस समय तक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता जब तक हम शिक्षा के साधनों में परिवर्तन नहीं लाते। हमारी शिक्षा के साधन वही पुराने और घिसे पीटे न हों। हमें आज के युग की नई रोशनी में पश्चिमी भाषाओं और शिक्षा के साधनों को अपनाना जरूरी है, क्योंकि इस नई दुनिया में पुराने दिमाग का जरा लेकर सफर करना असंभव है। नई समस्याओं को समझने के लिए और उन्हें सुलझाने के लिए हमें नई विचारधारा और नए विज्ञान की जरूरत है।
1: विचार बिंदु में आज आपने राजा राम मोहन राय के विचार सुने, और आइए अब मिलकर आरंभ करते हैं आज की आराधना।

आज की आराधना का शुभारंभ कर रहे हैं जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना के साथ। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। भक्ति का दीपक, प्रेम की बाती, आनंद सरिता बहती है। जगमग जगमग माँ के द्वारे हर पल खुशियाँ मिलती हैं।

शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। भक्तिभाव से परिपूर्ण ये भक्ति रचनाएं इस समय आप आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं।

सुरेश वाडकर के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। अब प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना। कृष्ण कन्हैया आप बिराजें गंगा जमुना तीर, मधुर मुरलिया श्याम बजावे मन हो जाए अधीर।

आइए अब आज की आराधना के समापन में सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में ये भक्ति वंदन। प्रीत न जाने रीत न जाने, जाने ना दुनियादारी, मीरा ऐसी रंगी श्याम में भूल गई सुदबुद सारी।

अभी आप समूह स्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मीनाक्षी साह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो हर पत्ता चमक उठता है, हर फूल मुस्कुराहट बिखेरता है और हर जीव अपनी उपस्थिति से कहता है कि मैं भी इस संसार का हिस्सा हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल पर्यावरण नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा है। बात हो रही है जैव विविधता दिवस की। दोस्तों, हर वर्ष 22 मई को मनाए जाने वाला ये दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैव विविधता केवल पेड़ पौधों और जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सभी अदृश्य संबंधों का जाल है जो जीवन को संभव बनाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता और मानव गतिविधियों से उत्पन्न खतरों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। सोचिए, अगर पेड़ पौधे ना हों तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? अगर मधुमक्खियां ना हों तो फसलें कैसे उगेंगी? अगर वन्य जीव ना हों तो प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहेगा? यही कारण है कि जैव विविधता हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी है। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता केवल उपयोग का नहीं बल्कि संरक्षण का भी है। दोस्तों, आज जैव विविधता संकट में है।

0: की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार जैसे कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही प्रकृति के इन अद्भुत रंगों और जीव जंतुओं को देख पाएगी। जैव विविधता को बचाना सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हजारों जीवों का घर होते हैं और जीवन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं। जंगलों को आग और अवैध कटाई से बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। हर जीव पर्यावरण की एक ज़रूरी कड़ी है। जानवरों का शिकार या उनके उत्पाद जैसे खाल, दांत, नाखून आदि खरीदना बंद करें। घायल या संकट में पड़े जीव जंतुओं की सूचना वन विभाग को दें। दोस्तों, प्लास्टिक न केवल जमीन बल्कि समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचें। कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करें। गीले और सूखे कचरे को अलग करके रखें। पानी को व्यर्थ न बहाएं। वर्षा जल संचयन अपनाएं। बिजली और ईंधन की बचत करें। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग ही संतुलन बनाए रखता है। खेती में जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं ताकि मिट्टी और छोटे जीव सुरक्षित रहें। अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं। पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। दोस्तों, हमारे ये छोटे छोटे प्रयास प्रकृति और जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। प्रकृति हमें जीवन देती है, अब हमारी बारी है उसे बचाने की। प्रकृति बचेगी तभी भविष्य बचेगा। प्रकृति को समझें, उसका सम्मान करें और उसकी रक्षा का संकल्प लें। जब हम हमारी इस अनमोल धरोहर को सहेज कर रखेंगी, तभी आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति की इस सुंदर विविधता का आनंद ले सकेंगी। चलते चलते आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडौलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडौलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबई नगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल् दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु।

0: परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्र लुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रय विक्रयणं, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। 21st-2000 पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनाङ्कैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 44-100 धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75-100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में

0: सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG Garg मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगी पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत डॉक्टर एन राजन से भेंट वार्ता। रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से अगला प्रसंग। कुमावनी लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रातः 7:50 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल। कुमावनी और गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे 11:30 पर लोक सुर कार्यक्रम में और दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनों से चर्चा का विषय होगा सजग रहें सुरक्षित रहें। साथ ही बहनें सुनेंगी उम्र बड़े स्टाइल नहीं तरीका बदलने विषय पर

दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:35 पर। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज श्रोताओं से चर्चाओं के विषय होंगे पीएम मुद्रा योजना और मिशन लाइफ ई कचरा कम करें।

भक्ति संगीत में शाम 6:41 पर आज आप सुनेंगे बिजॉय चौधरी और सुरेश वाटकर के गाए भक्ति गीत। शाम 7 ग्राम जगत कार्यक्रम में श्रोताओं से बातें होंगी कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी सब्जी व पारंपरिक फसल उत्पादन के लाभ विषय पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत नजर में। 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में। 11:00 सैनिकों के लिए। 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम में। अपराह्न 3 आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। हमारी सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर। 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। 9:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। और पुनः फिल्म संगीत आप सुनेंगे 10:30 पर।

सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत और पुनः रात्रि 10 बजे सुगम संगीत प्रसारित होगा। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम हैं, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक

0: श्री रामचरितमानस से प्रसंग संख्या 101 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। NHAI द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बूथ स्तर की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के गणेशपुर देहरादून भाग पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए पहाड़ी ढलानों की स्केलिंग और अतिरिक्त मलबा हटाने का कार्य कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राजमार्ग के करीब 1.25 किलोमीटर हिस्से पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। देहरादून की ओर से आने वाले वाहनों को किलोमीटर 14+650 पर लेफ्ट कैरिजवे से राइट कैरिजवे पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दिल्ली और सहारनपुर की ओर जाने वाले वाहनों को डाटकाली टनल के बाद पुराने हाईवे मार्ग से होकर निकाला जाएगा। NHAI के अनुसार बरसात से पहले ढलान स्थिरीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यातायात संचालन और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे फ्लैगमैन भी तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहे इस 6-लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के पहाड़ी हिस्से में पहले ही स्टोन कैचर लगाए जा चुके हैं, ताकि पत्थर गिरने जैसी घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में पार्किंग निर्माण, पेयजल व्यवस्था और जन सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए हैंडपंप स्थापना और टिहरी गढ़वाल की हिंडोला खाल पंपिंग पेयजल योजना से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण और कुंभ मेला 2027 से जुड़े अस्थायी पेयजल मरम्मत कार्यों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और जन सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुँच सके। प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। देहरादून स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में स्थापित 70 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से विभाग के बिजली बिल में भारी कमी दर्ज की गई है। सूचना विभाग के अनुसार पहले विभाग को हर महीने लगभग 1,20,000 रुपए बिजली बिल के रूप में भुगतान करना पड़ता था, जबकि सोलर प्लांट शुरू होने के बाद अप्रैल महीने का बिजली बिल घटकर करीब 1,700 रुपए रह गया है। ये सोलर प्लांट उरेडा द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया है। महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी ने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन 1,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ISBT परिसर सहित कई अन्य सरकारी परिसरों में भी सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की गई है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने उधम सिंह नगर जिले के मेलाघाट क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर भू कटाव बढ़ रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री सुमन ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक स्थानों पर जल्द बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा जिन क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य की आवश्यकता है वहां का प्रस्ताव और आकलन तैयार कर शासन को भेजा जाए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से भी बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद लोया हेड कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा काल से पहले सभी जरूरी बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे कर लिए जाए, साथ ही संभावित संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पहले से कार्य योजना तैयार रखने को कहा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा इन दिनों रफ्तार पकड़ रही है। अब तक देशभर से 13,000 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रतिदिन 1,000 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के चलते स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी मजबूती मिल रही है और होटल टैक्सी तथा होम स्टे संचालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
4: तो इस बार बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। अभी तक वर्तमान में 13,000 के पर्यटक यहाँ पर जो है आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा दारमा वैली में पंचाचूली में भी जो है काफी ट्रैकर्स वर्तमान में वहाँ पर जा रहे हैं और जो स्थानीय होम स्टे है उनको काफी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और काफी लोगों को उसमें स्वरोजगार भी मिल रहा है इस वर्ष।
1: वहीं आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालु और पर्यटक खासे भावुक और अभिभूत नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि यहां पहुंचकर उन्हें आध्यात्मिक शांति की अद्भुत अनुभूति हो रही है।
5: ओम नमः शिवाय, मैं मुंबई से आई हूँ। सारी थकान यहाँ पर आकर दूर हो गई है। यहाँ पर मुझे सत्संग में भी शामिल होने का मौका मिला और सरकार ने

0: बहुत अच्छी सुविधाएं की है, रास्ते बहुत अच्छे हैं, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, हम सुरक्षित पहुंच गए और यहाँ पर आकर हमने आदि कैलाश के दर्शन किए, बहुत खुशी हुई है।
1: आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों, ERO और AERO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में SIR अभियान की तैयारियों, प्रशिक्षण और बूथ स्तर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में बूथ लेवल एजेंट की शत प्रतिशत तैनाती नहीं हुई है, वहां जिलाधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करें, साथ ही नियुक्त BLA का प्रशिक्षण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बड़ी आवासीय सोसाइटीज और घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं, वहां विशेष कैंप लगाए जाएं। इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात कर रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी निर्देश दिए कि BLO घर घर सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पहनकर ही फील्ड पर जाएं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति न हो। केदार घाटी और जोशीमठ क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथिगृह और जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत किए जाएं। रुद्रप्रयाग के रतूड़ा गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। भवन का डिजाइन पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर समन्वय हो सके। इस परियोजना से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आने वाले पर्यटकों और विशिष्ट अतिथियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। NHAI द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालु ने किए दर्शन। और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने बूथ स्तर की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के कलाकार हैं हरीश चंद्र पांडे।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हरीश चंद्र पांडे के गाए लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

हरीश चंद्र पांडे के गाए इसी कुमाऊँनी लोकगीत के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

हरीश चंद्र पांडे के गाए इसी कुमाऊँ ने लोकगीत के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

महात्मा गांधी अहिंसा के दूत थे। वे अहिंसा को धर्म मानते थे। उनका मानना था, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला आदमी ईश्वर की शक्ति और कृपा का आश्रय लिए बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके बिना उसमें क्रोध, भय और प्रतिकार में हाथ उठाने की इच्छा से मुक्त रहकर खुशी खुशी मर मिटने का साहस नहीं आ सकता। ऐसा साहस तो इस विश्वास से प्राप्त होता है कि ईश्वर सबके हृदय में बसता है, और ईश्वर की उपस्थिति में डर किस बात का। ईश्वर की सर्वव्यापकता का मतलब ये भी है कि जिन्हें हम अपना विरोधी कहते हैं उनके प्राणों की भी हमें चिंता है। अहिंसा को शस्त्र और धर्म की संज्ञा देते हुए बापू ने कहा, अहिंसा प्रचंड शस्त्र है, इसमें परम पुरुषार्थ है। यह भीरु से दूर भागती है, वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क नीरस जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि चेतनमय है। यह आत्मा का विशेष गुण है, इसीलिए इसका वर्णन परम धर्म के रूप में किया गया है।

बापू का मानना था, ईश्वर भक्त वही व्यक्ति है जो प्रत्येक जीव में ईश्वर के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आप शायद ये कहेंगे कि एक बुजदिल व्यक्ति भी यह कहकर ईश्वर के भक्तों में खप जाएगा कि वह तलवार से काम नहीं लेगा। कायरता ईश्वर में आस्था का परिचायक नहीं है। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वाले व्यक्ति में तलवार चलाने की ताकत होती है, लेकिन वह यह सोचकर उसका इस्तेमाल नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की प्रतिमा है।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की

0: प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।

0: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and

Gama, papa, mother,

0: पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन चतुर्थ के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं और संरक्षण, पारिस्थितिकी स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से इन्होंने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के ठीक 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

गीत निर्झर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में, जो सजा है आपकी फरमाइश के फिल्मी गीतों से। प्रोग्राम के पहले गीत से पहले थोड़ी बातचीत आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। दोस्तों, प्रकृति एक अद्भुत कलाकार है जिसने इस धरती को अद्भुत रंगों, रूपों और विविधता से सजाया है। प्रकृति की यह विविधता केवल दृश्य रूप में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और संस्कृतियों में भी दिखाई देती है। हर जीव, हर वनस्पति का अपना अलग महत्व और योगदान है जो इस धरती के संतुलन को बनाए रखता है, लेकिन आज यही प्रकृति और जीव जंतु हमारी लापरवाही के कारण संकट में हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने इस संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमारी हर सांस, हर भोजन और दवा कहीं ना कहीं जैव विविधता से जुड़ी है, इसलिए इसका संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर जैव विविधता खत्म हो गई तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे और भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रकृति के इन खूबसूरत रंगों का आनंद ले सकें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, सिर्फ तुम फिल्म से। गीतकार थे समीर। इस गीत को सुनना चाहा था फूले नगर बीट शहर से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश और आकांक्षा करवा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम नगसीला अल्मोड़ा से प्रेम कुमार, सुरेंद्र किशन, शोभा, हिमांशु और गोकुल ने। जेल रोड दिल्ली से हमारे श्रोता थे लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। गुराया जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर। मेरठ बाईपास से राधिका कौर और आरती कौर। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता थे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। इसी गीत के लिए हमारे साथ जुड़े थे ग्राम रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्यों।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में नील कमल फिल्म से। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की और धुन बनाई है रवि ने। इस गीत की फरमाइश की है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय। ग्राम लसूडिया पाता नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। दूल्हापुर मुरादाबाद यूपी से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इसी गीत की फरमाइश की है राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी गीत को सुनना चाहा है देवरी भाटापारा से हमारे श्रोता के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर नीलकमल फिल्म का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, पत्थर की सनम फिल्म से। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा ने। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले।

प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान और आदेश कुमार काले। मालौत पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिमांश वर्मा। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। इसी गीत को सुनना चाहा है कटारमल अल्मोड़ा से सुनीता, वासु, मीनल, काव्या, प्रियंका, रिया, कोमल, आकांक्षा, पूजा और रोहिता ने।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: सूरज और चंदा, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। फरमाइश है रहटगांव कैंप अमरावती से। दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार के सभी सदस्यों की। लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहरबाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हैं नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे श्रोता हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपकी नजर।

अपनी पसंद के फिल्मी नगमे इस समय आप गीत निर्भर प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं नया दौर फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीत है साहिर लुधियानवी का और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत के इंतज़ार में हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। श्रीवडनी रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। गांव जाखोद से हमारे श्रोता हैं संभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ साहब अंसारी। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे, श्रीमती नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे और उत्तम जमदाड़े। इस गीत को सुनना चाहा है मोटका माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आशा भोसले की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मेरा साया फिल्म से ये सदाबहार नगमा। इस नगमे की फरमाइश की है फाजिल्का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, शलानी, दिवानशी, वाणी खेरा, आरबी खेरा और जीवन ने। इस गीत की फरमाइश की है गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी ने। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई। चंडीगढ़ से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। बागपत यूपी से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। इस गीत की फरमाइश की है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर मेरा साया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म शिकार से। गीत है असरत जयपुरी का, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार ने। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तनवी बोट,

शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा, मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, मालियान सरधना मेरठ से हमारे श्रोता हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन, यहीं से हैं मास्टर जिव्यम, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, पूर्णा जंक्शन

भगत। इसी गीत की फरमाइश की है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार ने।

बिया सोनू मोनू रानू सपना शिवी सलोनी और पिंटर बाबू शिवपुरम कॉलोनी से हैं। कमला देवी महोबिया अनय अनाया और ईशु बाबा। इसी गीत को सुनना चाहा है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा ने। ग्राम दूल्हापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। ग्राम पजौनिया जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल और निशा। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी बेबी हिमाक्ष। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। नई दिल्ली से हैं कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु। और इसी गीत को सुनना चाहा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनट्टी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

श्रोता हुआ, आइए अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाई दामिनी फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं समीर और इस नगमे को सुनना चाहा है गांव हांडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से राधे श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार। शीतला चौक खंडवा से हैं विशाल सिंह विवेक सिंह। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया कविता महोबिया।

गीत निर्झर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट्स मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS 4th के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों

0: रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश मनहर उदास की आवाज़ में।

आखिरी मंजिल इंसान की जो है कब्र। इस शेर में एक वर्ड आएगा लहद, लहद का मतलब है कब्र। आखिर में इंसान को नए कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, इसके बारे में देखे शायर ने क्या लिखा।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, सबरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हंसराज हंस की आवाज में ये गीत।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया है,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश मुन्नी बेगम की आवाज़ में।

मुन्नी बेगम को अभी आप सुन रहे थे। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गजल। शायर हैं सरदार अंजुम।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इसी गजल के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवस्थापना विकास, पेयजल व्यवस्था तथा जन सुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 29 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के साथ जन सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन होने से प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के गणेशपुर देहरादून भाग पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए पहाड़ी ढलानों की स्केलिंग और अतिरिक्त मलबा हटाने का कार्य कराया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा अब तक देश भर के 13,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रतिदिन 1,000 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। पर्यटकों की बढ़ती आमद से स्थानीय पर्यटन कारोबारों को भी मजबूती मिली है और होटल, टैक्सी और होमस्टे संचालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। प्रदेश में चारधाम यात्रा भी इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। यात्रा शुरू होने से अब तक उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा शुरू होने के एक माह के भीतर केदारनाथ धाम में श्रद्धालु की संख्या 16,50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि प्रतिदिन 30,000 से अधिक यात्री विभिन्न धामों के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में 2 अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठकों में रुद्रप्रयाग जिले के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथिगृह तथा चमोली जिले के जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना पर चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देशों के क्रम में नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत गठित टीम द्वारा कल 6 चिकित्सालयों में औचक निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व कर रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप राणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले के कई अस्पतालों का संचालन नैदानिक स्थापन अधिनियम में पंजीकरण के बिना किया जा रहा था। टीम द्वारा बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे इन अस्पतालों को मौके पर बंद करवाया गया। वहीं कुछ अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ मौजूद न पाए जाने के कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत

0: करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के बिना संचालित चिकित्सालयों को बंद किया जा रहा है, साथ ही स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं संबंधित मानकों में ढील बरतने वाले चिकित्सालयों से भी जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक ही कलाकार सेगमेंट के तहत हमारे आज के कलाकार हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राहुल रॉय। आशिकी बॉय के नाम से मशहूर राहुल रॉय ने कई बॉलीवुड फिल्मों को अपने अभिनय से सजाया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं उनकी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से कुमार सानू की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

9 फरवरी 1968 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे राहुल रॉय ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के साथ की। फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के साथ और उनकी ये पहली ही फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों, इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि 90 के दशक में थे और इस फिल्म की सफलता के साथ ही राहुल रॉय भी रातों रात स्टार बन गए। तो चलिए सुनते हैं राहुल रॉय की सुपरहिट फिल्म आशिकी से एक खूबसूरत गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत आज आप सुन रहे हैं अभिनेता राहुल रॉय की फिल्मों से चंद गीत।

दोस्तों, फिल्म आशिकी के बाद राहुल रॉय का करियर ऊंचाइयों पर था और उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। उनके अभिनय से सजी फिल्मों में आशिकी, प्यार का साया, जुनून, जानम, सपने साजन की, पहला नशा, गुमराह, फिर तेरी कहानी याद आई, गेम, मेघा, नसीब, अचानक, फिर कभी, मेरी आशिकी, रफ्ता रफ्ता, कैबरे और वर्ष 2023 में आई फिल्म आगरा शामिल है। आइए अब चलते चलते सुनते हैं उनकी फिल्म प्यार का साया से ये खूबसूरत गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

प्यार का साया फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार थे अभिनेता राहुल रॉय।

सुरबहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना दिल जले फिल्म से। आवाज़ें थीं कुमार सानू और आदित्य नारायण की, नगमा निगार थे जावेद अख्तर। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिदा फिल्म से। गीत है समीर का और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और कुमार सानू की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं गदर फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार एस की। गीत एक बार फिर से आनंद बख्शी का है और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

सैनिक भाइयों, गदर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए बॉर्डर फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं जावेद अख्तर।

बॉर्डर फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं विमला भंडारी और वीरेंद्र डंगवाल का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। इस कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति गढ़वाली लोकगीत के साथ। कलाकार हैं भगवती प्रसाद पोखरियाल।

श्रोता भी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुपांक्ति का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, तस्वीरें लेना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब, आईने उजरा वक्त बताया नहीं करते। जो बीत गया वो इतिहास में दर्ज हो गया, जिसे संजो लिया तस्वीरों में वो ता उम्र हम सफ़र बन गया। तस्वीरें ज़िंदगी का बेहद ख़ास हिस्सा होती हैं, जिसमें छिपे ज़िंदगी के कई राज शामिल होते हैं। बीते वक्त को याद कर कभी खिलखिलाना, कभी मुस्कुराना, कभी आंखें नम कर लेना, कभी उदास हो जाना, तो कभी बेचैनी महसूस करना, तो कभी सुकून तलाशने का खूबसूरत जरिया है तस्वीरें। तस्वीरों में क्या कुछ नहीं है, कुछ आपके कुछ हमारे हर एक के खास लम्हे कैद हैं इनमें। तस्वीरों को आज हम भी मेरी पसंद का हिस्सा बना रहे हैं, खूबसूरत नगमों से इसे सजा रहे हैं। इन लम्हों में आप हम सभी कुछ यूं तराने गुनगुना रहे हैं।

तो श्रोताओं, तस्वीरों में कैद किस्से, कहानियाँ, अनमोल लम्हों की, दास्तानों की खूबसूरत लड़ियों को यादों में पिरोने का बेहद ख़ास ज़रिया होती हैं तस्वीरें। जब भी आप खूबसूरत वादियों में अनमोल सौंदर्य को निहारते हैं तो आंखें देखती हैं, जी नहीं भरता, लेकिन हाँ, कैमरा है तो तस्वीरें हाजिर हैं और इन खूबसूरत वादियों में गुनगुनाते आप तस्वीरें लेते हैं, तो फिर जब लौट कर आते हैं अपने घर पर और उन लम्हों की एक लंबी सी कड़ियों को, लड़ियों को संजो लेते हैं, तो याद आते हैं वो खूबसूरत लम्हे जिन्हें हम बिता कर आए हैं। फिर वो अगर कश्मीर हो तो फिर कहना ही क्या।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, क्लिक की पल भर की आवाज संग एक लम्हा गुजरने के साथ हम संजू लेते हैं वो खास पल जिसे हम जी रहे होते हैं। जानते हैं दोबारा नहीं आने वाला ये खास पल, पर यादों के झरोखों से जब भी हम झांकेंगे तो उन लम्हों को अपने उस शख्स को अपने करीब ही पाएंगे। और ऐसे में ख्वाब कुछ अपनी महबूबा के लिए संजोए हुए हों तो बस यही कहते बनता है कि जो शख्स तेरी तस्वीर देखकर ही महक जाए, जो शख्स तेरी तस्वीर देखकर ही महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या हाल होगा।

इन तस्वीरों में तेरे चेहरे का जादू है, इन तस्वीरों में तेरे चेहरे का जादू है। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, कहानी है। तेरे चेहरे की तस्वीर दिल में बसी है, कभी ख्वाबों में कभी आँखों में दर दर लिए फिरते हैं। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है।

तो श्रोताओं, फोटोग्राफी भी एक खूबसूरत आर्ट है, तकनीक है। यूं ही क्लिक करना एक अलग बात है, लेकिन ख़ास एंगल से, ख़ास तकनीक से जब पिक्चर क्लिक की जाती है तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन जज्बातों की बात हो तो दिल की बातों को खामोशी से बयां करने का बेहतरीन ज़रिया होती हैं तस्वीरें। तस्वीर बनाने की बात हो, तस्वीर संग ख्वाब संजोने की बात हो, तो एक गाना तलत महमूद साहब की आवाज़ में, जो कि कालजयी गीत है, वो हमेशा जहन में आता है।

खुदों बेरंग जिंदगी में रंग भरती हैं तस्वीरें। ये उस आशिक से पूछिए जिसे अचानक उसकी महबूबा की तस्वीर मिल जाए तो वो कुछ यूं बयां करता है। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं।

शुद्धों खूबसूरत तस्वीरों के संग के मधुर तरानों का सफ़र यहीं तक। इजाज़त दीजिए अंजू पांक्ति को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है मैनू आप सभी का। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं को आपके रेडियो सखी प्रीति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारी सभी बहनें स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, इसी कामना के साथ चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों देखिए ना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं सच्ची अर्थों में सभ्यता जन्म लेती है। मैंने हमारा देश संस्कृति परंपरा और संस्कारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ नारी को देवी स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, लेकिन बहनों एक कड़वा सच ये भी है कि जिस नारी को पूजा योग्य माना जाता है वहीं नारी को आज भी कई स्थानों पर असुरक्षा भय अन्याय का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहनों आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सजग रहें, सुरक्षित रहें। बहनों महिला सुरक्षा केवल एक सामाजिक विषय नहीं बल्कि मानवता का दर्पण है। बहनों एक महिला केवल अपने सपनों को नहीं पूरे परिवार की उम्मीदों को साथ लेकर चलती है। उसकी मुस्कान में घर की खुशियां बसती हैं और उसकी साहस में समाज की शक्ति दिखाई देती है। लेकिन बहनों ये शक्ति तभी मजबूत बनती है जब वो अपने अधिकारों अपनी सुरक्षा अपनी आत्मशक्ति के प्रति सजग रहे। बहनों जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ केवल उसके सपने नहीं चलते बल्कि उसके माता पिता की चिंता भी साथ साथ चलती है। आप देखिएगा ना, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो माँ कहती है बेटा ध्यान से जाना, और पिताजी बार बार फोन करते हैं ठीक से पहुंच गई ना। मैंने ये चिंता केवल प्यार नहीं बल्कि समाज की उस सच्चाई का डर है जहां हर कदम पर महिलाओं को सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन बहनों क्या केवल डर कर जीना ही समाधान है? नहीं ना, समाधान है जागरूकता, साहस और समाज की बदलती सोच। आज के समय में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हर लड़की को अपना सपनों को पूरा करने का पूरा अधिकार है और ये तभी संभव है जब वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। यानी कि हर परिस्थिति में सतर्क रहना और अपने अधिकारों को जानना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना। मैंने सबसे पहले तो जरूरी है आत्मविश्वास। जी हाँ, डर क्या होता है ना, कई बार अपराधियों की ताकत बन जाता है। इसलिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और देखिए यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे तो चुप रहने के बजाय तुरंत विरोध करें, अपनी आवाज़ उठाएं, कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। देखिए आज मोबाइल फोन सुरक्षा का एक बड़ा साधन बन चुका है। और बहनों आप तो जानती हैं कि जब मोबाइल है और ऑनलाइन सुविधाएं इतनी बड़ी हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। इसलिए हमेशा अपने फ़ोन में परिवार वालों का नंबर, पुलिस का नंबर और महिला हेल्पलाइन का नंबर हमेशा सेव रखें और किसी भी अनजान जगह पर सुनसान रास्तों पर जाने से हमेशा बचें और ज़रूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों की सहायता ज़रूर लें। बहनों आज के समय में आत्मरक्षा सीखना भी ज़रूरी है। कराटे, सेल्फ डिफेंस या छोटे छोटे सुरक्षा उपाय लड़कियों को कठिन परिस्थितियों में खुद को बचाने का साहस देते हैं। और बहनों आप देख रहे होंगे कि कई स्कूल और संस्थाएं अब महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही हैं जिसका लाभ हर लड़की को लेना चाहिए। बहनों सोशल मीडिया के समय में ऑनलाइन सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि जैसे कि देखिए आप ऑनलाइन में अपनी निजी जानकारी हो गई, फोटो हो गई, लोकेशन किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी भी साझा न करें। बहनों महिला सुरक्षा के लिए समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। हर माता पिता को अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान कराना सिखाना चाहिए। यदि लड़कों को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे तो समाज में अपराध कम हो सकते हैं। हमें समझना होगा कि महिला सुरक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि जागरूकता, शिक्षा और सम्मान से आएगी। जब उन्हें बराबरी का सम्मान मिलेगा तो महिला सुरक्षा खुद ही साकार हो जाएगी। और बहनों जिस दिन

महिला सुरक्षा का सपना साकार हो गया तो हर लड़की निडर होकर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगी। धनुष में महिलाओं को ऐसा वातावरण देना है जहां वे बिना भय के जी सके, जहां रात में भी कोई बेटी अपने सपनों के साथ निडर होकर चल सके, जहां उसकी पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र और प्रतिभा से हो। मैंने देखिए ना, जब समाज बदलेगा, लोग बदलेंगे, तभी तो महिला सुरक्षा का सपना साकार होगा ना। बहनों, आज आवश्यकता है हम केवल सोशल मीडिया पे महिलाओं का सम्मान करें लिखने तक सीमित ना रहें, बल्कि वास्तविक जीवन में भी महिलाओं का सम्मान करें। यदि किसी महिला के साथ गलत होता है तो मूक दर्शक बनने के बजाय उसकी सहायता करें, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब लोग बदलते हैं। बहनों, याद रखें, सजग रहें, सुरक्षित रहें सिर्फ एक संदेश नहीं, हर महिला के आत्मसम्मान, साहस और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। और जब हर बेटी निडर होगी, हर महिला सम्मान से जी पाएगी, तभी जीवन में खुशियों की वो मधुर धुन गूंजेगी जिसे हम प्यार से कहते हैं, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगी।

0: मैनू बातों की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैनू आज है शुक्रवार, आज हमारे कार्यक्रम का खास अंक होता है फैशन फ्राइडे। मैनू उम्र चाहे कोई भी हो, समय के साथ स्टाइल और फैशन बदल ही जाता है। मैनू बातचीत के इसी क्रम में आइए सुनते हैं उम्र बड़े स्टाइल नहीं तरीका बदले विषय पर श्रीमती मंजू चिलवाल ब्यूटिशियन अल्मोड़ा से की गई बातचीत। बहनों, जवानी तो एक दौर है लेकिन खूबसूरती एक एहसास जो उम्र के साथ और निखरता जाता है। और बहनों कहते हैं ना, उम्र बड़ी तो क्या हुआ, हुनर तो और निखरा है ना। जो खुद से प्यार करना सीख जाए वही सबसे खूबसूरत चेहरा है, और वही सादगी जब आत्मविश्वास से मिलती है तब स्टाइल बनता है। बहनों जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज भी आप वही हैं जो आप 20 साल पहले हुआ करती थी? नहीं ना, आज आप अधिक मजबूत हैं, अधिक समझदार हैं और अधिक सुंदर हैं। बहनों समय के साथ उम्र बढ़ती है, चेहरे पे अनुभव की रेखाएं उभरती हैं, सोच में परिपक्वता आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टाइल पीछे छूट जाए। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही है एक ऐसी ब्यूटिशियन जिन्होंने हर उम्र की महिलाओं को सवारा, समझा और आत्मविश्वास दिया। तो आइए मिलते हैं श्रीमती मंजू चिलवाल जी से। स्वागत है मंजू जी, आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: नमस्कार
0: मंजू जी, कहते हैं ना कि उम्र बड़े स्टाइल नहीं बस तरीका बदले, तो इसका क्या मतलब है?
1: देखो, इसके बारे में यही कहना चाहूंगी, उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जैसा शौक होता है वैसा करना चाहिए। 30 हो 40 हो 50 हो, अपने हिसाब से इंसान मेकअप करता है, अपने हिसाब से वो आउटफिट पहनता है, मतलब शौक के ऊपर डिपेंड करता है। उम्र इतने मायने नहीं रखती, आपका शौक मायने रखता है। तो फिर वो लेडीजों के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से सोचती है, किस तरह से सजना चाहती है। हमारी राय तो यही होगी कि बढ़ती उम्र में इंसान जितना सिंपल सोबर रहे उतना अच्छा रहेगा, और हम अपने कस्टमर को भी यही राय देते हैं। और मेकअप आजकल कई तरह का होता है, तो आजकल तो वैसे भी चाहे उम्र के से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, सब न्यूड और सिंपल मेकअप मांगते हैं।
0: जी।

0: उनकी फैमिली उनके हस्बैंड यही चाहते कि हमारी वाइफ सिंपल सोबर और सुंदर दिखे, नेचुरल ब्यूटी
1: जी,
0: बस यही उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंसान के अंदर उमंग होनी चाहिए और थोड़ा सा मेकअप में ही होता, उम्र का ये होता है कि मेकअप में फर्क पड़ता है कि आप 20 की उम्र वाला 50 वाला नहीं कर सकता
1: जी,
0: बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और इंसान ऑटोमेटिक अंदर से भी चेंज हो ही जाता
1: है। और देखिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है बस हमें अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, स्टाइल हमेशा ही हमारे साथ रहता है।
0: क्यों नहीं, जैसे आप 20 की उम्र में स्टाइल आप नहीं छोड़ सकते हो लेकिन मेकअप और आउटफिट वगैरह चेंज कर सकते हो। होने को तो देखो आजकल जींस 20 की भी पहन रही है, 50 की पहन रही है
1: जी,
0: लेकिन और चीज में कर सकते हो जैसे हैवी ज्वेलरी,
1: हाँ।
0: और क्या कहते हैं मेकअप डार्क नहीं। आजकल तो आप कम उम्र वाली को भी देखो बहुत न्यूड मेकअप करते हैं
1: जी,
0: हमारी जैसे बढ़ती उम्र है हमारे फेस पे फाइन लाइन आ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूड से न्यूड बहुत ही कम वेस अप्लाई करें
1: जी,
0: ताकि वो दिखे, क्योंकि हम फाइन लाइन को कवर कर ही नहीं सकते। हाँ वहाँ अगर 20 की लड़की है उसमें अगर हम डार्क भी कर देंगे चल जाएगा, क्योंकि फाइन लाइन ही उनकी स्किन एब्जॉर्बिंग है। तो मतलब सबको अपने ऊपर है कि डिपेंड हो किस तरह से उसने अपने को प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, उस हिसाब से उसको खुद मतलब अकल रहती है कि मैं जैसे बढ़ती जा रही तो मुझे किस तरह फैशन में अपने को चेंजेस लाने हैं।
1: मंजू जी, क्या समाज आज भी उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं से स्टाइल छोड़ने की अपेक्षा करता है?
0: नहीं, आज का समाज ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के बाद स्टाइल, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद ही औरत को ज्यादा अपने को मेंटेन की जरूरत पड़ती है, अपने को मतलब अपने फेस को उभारने की जरूरत पड़ती है। जहाँ अगर जवानी की उम्र है वो तो ग्लो करती है लेकिन ढलती उम्र में तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। और समाज अब वो नहीं रहा कि भाई आप ये मत करो वो मत करो, तो आजकल उनके हस्बैंड चाहे उनके परिवार है उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम जिस तरह से अपने को मेंटेन कर सकते हो, तो ढलती उम्र में मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है।
1: और ये बात बिल्कुल ठीक कही कि आपने, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें केयर और देखभाल की अधिक जरूरत होती है। मंजू जी, 20 से 30 वर्ष की महिलाओं के लिए कहते हैं कि स्टाइल का तरीका भी अलग होता है और उनकी फैशन का तरीका भी अलग होता है, तो इस 20 से 30 की महिलाओं का क्या फैशन होता है, क्या स्टाइल होता है?
0: 20 से 30 की महिलाओं का फैशन, तो इसमें मैं वर्ग बांटना चाहूंगी
1: जी,
0: जैसे मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, उस हिसाब से लोग अपना चलते हैं। अगर मिडिल क्लास है तो सिंपल, और जो हाई क्लास है वो तो बहुत ही न्यूड मेकअप रखता है, जो लो क्लास है वो थोड़ा सा मतलब डार्क मेकअप ही करते हैं। मतलब इसमें मैं ही नहीं कह सकती कि भाई 30 से 30 वाला कैसे मेकअप करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह जाता है। और अगर जैसे कोई हमारी ब्राइड होती है 20 से 30 वाली है, होती है हमारे पास अधिकतर वही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सिंपल और न्यूड लुक
1: जी।
0: तो अब उम्र में मुझे नहीं लगता कि फैशन या मेकअप बना है।
1: और देखिए ना, 20 से 30 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि हर महिला हर चीज को ट्राई करना चाहती है, तो कैसा मेकअप उनका रहना चाहिए और कैसी ज्वेलरी उनको कैरी करनी चाहिए?
0: अब ये जैसे हम पर डे होता है जो हमारा नॉर्मल लाइफ होती है उसमें तो हम ना ज्वेलरी पहन सकते हैं, ठीक है। अगर लड़कियां पहनना चाहती है बिल्कुल लाइट, वैसे भी ज्वेलरी आजकल पहनती है
1: हाँ,
0: लेकिन उनके घर में फंक्शन हो तो हम उससे ये कहेंगे भाई तुम ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनो और लाइट वेट ज्वेलरी पहन लो, न्यूड मेकअप रखो, हमारी तो यही मतलब राय होती है। बाकी आजकल की लड़कियों की भी यही डिमांड होती है कि हमें सिंपल सोबर बिल्कुल नो मेकअप मेकअप लुक होना चाहिए, और उनके ऊपर डिपेंड है कि किसको कैसा मेकअप चाहिए। एक लड़की इसको डार्क चाहिए, एक लड़की इसको न्यूड चाहिए, फिर हमें स्किन टोन भी देखना होता है। और ड्रेसअप की जहाँ बात की जाए तो ड्रेसेस का कोई वो नहीं है, वो किस तरह भी पहन सकते हैं, गाउन, लहंगा, लांचा, वन पीस, सब तरह का डाल सकते हैं, क्योंकि उम्र ही ऐसी कि उनकी बॉडी पे वो सब चीज जाएगा,
1: बिल्कुल
0: उन पे वो जचेगा। लेकिन वहीं अगर 50 की महिला वो चीज करना चाहे तो मुश्किल है, वो नहीं जा सकता
1: जी।
0: तो कम उम्र वाली लड़कियां तो कुछ भी कर सकती है, मतलब अब उनकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लड़की फेयर कलर की है, अगर डार्क लड़की है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस पर क्या मेकअप जाएगा, और बॉडी स्ट्रक्चर भी, कोई स्लिम ड्रीम है कोई मोटी है, तो हम तो दिखाएंगे कि भाई थोड़ा सा अगर किसी के फैटेड बॉडी है तो उसको हम किस तरह से मेकअप करते हैं, इसके आउटफिट किस तरह से उसको कैरी करते हैं। और जो थोड़ी स्लिम ड्रीम लड़कियां हैं उनमें तो सब चीज खप जाता है, पर डिपेंड है कि लड़कियों के ऊपर कि वो क्या चाहती है, और सबके अपने शौक
1: जी।
0: अगर हम सामने वाले को अगर उसको शौक है हम उससे बोलेंगे ऐसा करो, लेकिन उसको अंदर से येगा कि मुझे ये अच्छा लगता है। अगर मैं उनसे बोलूंगी न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी, उन्हें डार्क लगाऊंगी, मैं उनको कहूंगी भी, तभी वो अंदर से उनको यही आएगा कि मुझे डार्क ही चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे डार्क ही जाता है। तो फैशन मुझे लगता है उम्र में बदला
1: जी। पर देखिए ना, यही उम्र जब समय के साथ बढ़ती जाती है, जब महिलाएं 30 से 40 की उम्र में पहुंचती हैं, तो स्टाइल भी चेंज होता है और फैशन भी बदलता है।
0: जब एज बढ़ जाती है तब तो फैशन और आपका हर चीज चेंज हो जाता है, और मुझे लगता है महिलाओं ने उस चीज में जाना चाहिए। अगर वो चीज छोड़ के वो करेंगे तो ओवर लगता है, लेकिन हाई क्लास महिला तो हमेशा सिंपल सोबर लेना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड है वो महंगी से महंगी ज्वेलरी, महंगी से महंगी आउटफिट। वो जब वो चीजें पहनती है जो उनकी आउटफिट ज्वेलरी होती है तो वो इतनी अच्छी होती है कि वो एज पे फर्क नहीं पड़ता, वो उनको बहुत अच्छा। तो यही है एज का, चाहे 20, 30, 40, 50 हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद और आपको अपने ऊपर क्या अच्छा लगता है। 40 के बीच में महिलाओं का मेकअप बिल्कुल सिंपल सोवर होना चाहिए। हेयर स्टाइल भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल रखो, कोई फ्लैटी वगैरह नहीं, जो आपके फेस के अकॉर्डिंग हो। और आउटफिट पे भी ध्यान दो कि आप वो 20-30 वाली महिलाओं के हिसाब से ना पहनो, लड़कियों के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग पहनो। जितना सिंपल पहनोगे वो उतना अच्छा लगेगा।
1: और जब आप महिलाओं के 20-30 की या 40-50 की बात करते हैं तो उनमें घरेलू महिलाएं जो वर्किंग वीमेन है तो उन दोनों के लिए अलग स्टाइल होना चाहिए।
0: अब उन दोनों के लिए तो हम स्टाइल एक ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है वो अपने हिसाब से स्टाइल चुनती हैं। अब जो वर्किंग वूमेन है वो थोड़े से न्यूड पे जाती हैं, जो हाउस वाइफ है वो बजट के अकॉर्डिंग चलती हैं। बजट उनके लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम कहेंगे ये लो तो वो पहले देखेंगे कि इसका बजट कितना जा रहा है, तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही फैशन करता है। और जो घरेलू वो सोचती है इतना हम यहाँ बचा लेंगे हमारे बच्चों काम आ जाएगा, और जो वर्किंग वूमेन होती है वो उनके पास है भाई, वो अपने हिसाब से आउटफिट में भी खर्च कर सकती है, ज्वेलरी में भी खर्च कर सकती है, और बाकी हमारे अकॉर्डिंग ही चल जाती है कि मैम आप बताइए हम पे क्या जाएगा। तो सिंपल सोवर ही सबसे बेस्ट है।
1: देखिए समय के साथ साथ उम्र तो बढ़ती है, लेकिन मन करता है कि हमेशा हमें स्टाइल में रहना चाहिए। और मेकअप करना और अपनी देखभाल करना तो हर महिला की पहली इच्छा होती है और उनका शौक भी होता है। अब देखिए ना समय के साथ थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा स्टाइल भी बदलता है,

0: आ जाएगा। तो सिंपल सोबर ही सबसे बेस्ट है।
1: देखिए ना, समय के साथ साथ उम्र तो बढ़ती है, लेकिन मन करता है कि हमेशा हमें स्टाइल में रहना चाहिए। हम मेकअप करना और अपनी देखभाल करना तो हर महिला की पहली इच्छा होती है और उनका शौक भी होता है। अब देखिए ना, समय के साथ थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा स्टाइल भी बदलता है, मेकअप का तरीका भी बदलता है और हमारे पहनावे में भी अंतर आता है।
0: एज बढ़ने के हिसाब से तो मेकअप से ज्यादा है कि आप स्किन केयर करें। स्किन केयर सबसे बेस्ट है, उसमें नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है। अगर आप अपनी स्किन केयर प्रॉपर किया है तो मतलब आपको फिर मेकअप की इतनी नीड ही नहीं होती। हाँ, कभी आपके घर में कोई फंक्शन है तो लाइट मेकअप करा सकते हैं। ये चीज और कुछ नहीं होता है। डिफरेंट इतना ना कि मैं अपनी हर कस्टमर से कहती हूँ कि आप स्किन केयर पे बहुत ध्यान दो, जैसे योगा वगैरह करो, घर में अपने खाने पीने पे ध्यान दो। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। मेकअप ही सब कुछ नहीं होता, मेकअप है वो आपके फंक्शन वगैरह के लिए। डेली यूज में आप मेकअप नहीं कर सकते
1: जी,
0: लेकिन बहुत महिलाएं हैं, जो बहुत लड़कियां हैं जिन्हें रोज मेकअप करने की आदत होती है। अगर वो जैसे एक लड़की है वो काजल लगाती है, अगर वो काजल लगाए रोज लगाती और एक दिन ना लगाए तो वो देखो उसका चेहरा ऐसा लगता है कि इससे मतलब कभी इसने कभी कुछ किया ही नहीं। अगर आज जैसे आप एक सिंपल महिला को भी काजल लगाती है और अगर जिस दिन लगाएगी वो बिल्कुल डिफरेंट मतलब बहुत सुंदर दिखती है। वही होता है ना, मेकअप रोज करोगे तो रोज जैसे आम दिखोगे, अगर मेकअप कभी कभार होगे तो स्पेशल सा मतलब सुंदर सी लगती है। और बाकी टाइम आप अपनी स्किन केयर पे ध्यान दो, जैसे हम फेशियल मसाज डिटेन कहते हैं। अभी जैसे वर्किंग वुमन आती है वो इन चीजों पर बड़ा ध्यान देती है, वो पार्लर में आती है प्रॉपर तरीके से रहती है, मंथ में दो दो तीन तीन सीटें। लेकिन हाउस वाइफ वो छह महीने में जब उनका यहाँ फंक्शन होगा तब कहेगी अरे यार हमारा फेशियल कर दो, ये हो गया। अब हम उसको कवर तो नहीं कर सकते ना, मेंटेनेंस बहुत जरूरी। जैसे हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए योगा जिम क्या क्या नहीं करते, वैसे ही फेस को मेंटेन करने के लिए फेशियल मसाज ये सब चीज जरूरी होती
1: है। मंजीत जी, आपने बात की कि हमें फेशियल कराना चाहिए, हमें मसाज करानी चाहिए, तो कहते हैं कि अगर आप अपने चेहरे की मसाज करते हैं तो उससे भी हमारी स्किन में बहुत फर्क पड़ता है।
0: उससे ये पड़ता पड़ता है, देखो स्किन में टैनिंग आती है। अगर आपके जैसे कहते हैं आप करोगे ब्लड सर्कुलर बनेगा, आपके फेस की टैनिंग जाएगी, सन बन जाएगा और फेस मेंटेन रहेगा, तो उसके लिए फेस में टाइटनिंग रहेगी जो लूज पड़ जाता है। प्रॉपर मसाज के तरीके अच्छे हों, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हों तो स्किन टाइट रहती है। अब मतलब एज के साथ तो जुड़ी आनी है, लेकिन आपने मेंटेन रखा तो कुछ लेट हो जाएगी, बाद में आएगी। जैसे आपकी 30-40 में आ जा रही है, अगर आपने अपने स्किन केयर पे फेशियल में अगर ध्यान दिया है तो 40 की जगह 50 पाएगा।
1: तो सभी को ही मसाज करानी चाहिए ना,
0: क्योंकि आज के समय में जैसे हम लोगों का इधर उधर जाने का काम, वर्किंग वूमेन आजकल घर में बैठे हुआ है तो डस्ट होती है, सनबर्न होता ही है, पोर्स बंद होते हैं, इसके लिए मसाज फेशियल टीटेन वगैरह बहुत जरूरी।
1: मंजू जी, जो 50 प्लस उम्र की महिलाएं हो जाती हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: उनके लिए यही कहना चाहूंगी, स्किन को अपने मेंटेन रखें, स्किन केयर करें, सिंपल सोबर रहें। अगर आपके घर में फंक्शन है तब आप न्यूड मेकअप करवा सकते हैं।
1: और देखिए ना, अक्सर महिलाओं की सोच होती है कि अब हमारे लिए फैशन नहीं है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप?
0: नहीं नहीं, ये गलत सोच है। फैशन हर उम्र की महिलाओं के लिए, उम्र के अकॉर्डिंग फैशन करोगे।
1: मंजू जी, सबसे बड़ी गलती अक्सर महिलाएं क्या करती हैं?
0: सर गलती यही रहती है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जिस उम्र में उन्हें ध्यान करना चाहिए वो अपने घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। देखो सबके घर हैं, सबके पति हैं, बच्चे हैं, वो इतना मगर ना हो कि कुछ टाइम वो अपने लिए भी दें। अगर महीने में एक वो फेशियल मसाज वगैरह करें, अपने को मेंटेन रखें, तो ये चीज गलत रहती है। फिर आने वाले वक्त में उनको दिखता है, उस समय फिर सोचती है कि काश मैंने किया होता, लेकिन फिर रह नहीं जाता टाइम।
1: और देखिए ना, महिलाओं को अक्सर लगता है कि उम्र के बढ़ने के साथ हमारा फैशन भी सीमित हो जाएगा, तो उनकी ये सोच कितनी सही है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीमित नहीं होता, वो आपके मन के ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो। आप क्या कहते हैं, 50 की उम्र में, 30-40 की उम्र में अच्छा खासा बन सकते हो, स्मार्ट बन सकते हो, स्टाइलिश रह सकते हो। यही थोड़ा है कि आप सूट और उसमें बंधे रह जाओगे, आप वन पीस भी पहन सकते हो, जींस भी पहन सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो।
1: और देखिए ना, मंजू जी कहते भी हैं कि सबसे बड़ी जो हमारे चेहरे की खुशी होती है वो हमारा आत्मविश्वास होता है, वो हमें सुंदर बनाता है।
0: महिलाओं की सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि मेकअप करके हम सुंदर दिखें, सामने लोगों को हम नजर आए। गलती उम्र में लोग ध्यान नहीं देते, अगर स्मार्ट बन के जाएंगे तो लगेंगे यार कुछ जा रही पर्सनैलिटी। तो जरूरी है कि भाई मेकअप करो, लेकिन लिमिट से करो।
1: बिल्कुल मंजू जी, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपना ध्यान दें, ये नहीं कि पूरा परिवार में घुसे अपना ध्यान ना दें। आपके 20-30 से ही आप अपने को मेंटेन करके रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपने खाने पीने में ध्यान दें, बस अपने केयर करें।
1: मंजू जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी सभी श्रोता सखियों को दी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी उम्र बड़ी स्टाइल नहीं तरीका बदलें, विषय पर श्रीमती मंजू चिलवाल ब्यूटीशियन अल्मोड़ा से की गई बातचीत। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अब समय हो गया है कार्यक्रम के समापन का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो सखी प्रीति जाटव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: बहनें अभी सुन रही थी घर संसार। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश

0: मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। और चमोली जिले में गोविंदघाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना। कल खुलेंगे कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुए घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून जिले के सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगामी बरसात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलबे की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तत्काल इसके चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। श्री जोशी ने सरखेत क्षेत्र में आपदा के मलबे के चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए विधायक निधि से 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में कई ऐसे होमस्टे सामने आए हैं जो निर्धारित नियमों के विपरीत होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित किए जा रहे थे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 8 कमरों तक के आवासों को भी योजना के तहत आवेदन की अनुमति दी है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
2: होमस्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होमस्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होमस्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होमस्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होमस्टे चला रहे हैं, तो उनको बीएनबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जिले में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 3,86,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 281 मरीज बच्चों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया और 132 बच्चों का उपचार हुआ। वहीं 149 मामलों में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत

0: 30 बीमारियों को कवर किया जाता है और सभी बीमारियों का निशुल्क इलाज होता है।
1: इसमें लगभग 30 बीमारियां कवर होती हैं, जिसमें डेवलपमेंटल डिले है, जिसमें डिसीजेज हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से संबंधित हैं, और जिसके अंदर आपका कंजनाइटल डिसीजेज हैं, इस तरह की जो डायरिया वगैरह हैं, ये सब बीमारियां इसमें कवर होती हैं। और पूरा ये कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 0 से 6 साल तक के आंगनबाड़ी में बच्चे देखे जाते हैं, 6 से 18 साल तक के बच्चे स्कूल्स में विजिट करके देखे जाते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल है और अच्छी तरह से चल।
0: बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर दवाएं दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला है।
2: ये हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, इसकी इसका वजन नहीं बढ़ता, इसकी तबीयत खराब रहती है, खाता नहीं है, इसलिए हमें इन्होंने बुलाया था आंगनबाड़ी वाली ने, तो हम यहाँ पर आए, दिखाया, इन्होंने दवाइयां दी और चेकअप के लिए बोला, कहा जिला अस्पताल आओ और आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। एक बच्चा बोलता नहीं है, इसके लिए भी लिखा उन्होंने, कहा वहाँ पर लेकर आओ, इसे भी आराम हो जाएगा।
3: आंगनवाड़ी में मेरी मोनोमिसिस बच्चों को लेकर आई थी, यहाँ बच्चों को डॉक्टर साहब ने देखा है, चेकअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया है, इसका इलाज वहाँ पर होगा और प्लस लोगों ने यहाँ पे दवाई उनको रिसीव करी है।
0: चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पहले जत्थे के साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा पूरी कर सके। यह जत्था आज रात घांघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल विधि विधान और अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों के निस्तारण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
4: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDM तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के, सभी के साथ में बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी, चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं, उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं पंकज उधास और साथियों के गाए नगमे के साथ

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुगम संगीत में अब पेश है गुलजार का कलाम, आवाज जगजीत सिंह की।

श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से

0: सकते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वारभाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छान कर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water,

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मर्दा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति

0: में बातें होती।
1: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
2: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
1: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
2: हाँ।
1: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
2: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
2: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आ जाओ, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
2: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
3: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
4: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
2: हाँ, ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
2: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
2: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
2: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
2: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
3: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
4: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
3: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
4: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
2: अब मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे, इसको भी डालो।
2: हाँ,
1: ये देखो
2: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
1: प्यारा लग रहा है।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
4: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: हमारा शहर हो
3: बढ़िया। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी।

0: बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगे।
1: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
3: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
4: हमारा शहर हो
5: पटना।
6: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
6: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
8: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
6: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
9: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
6: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: श्रोता भी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे और इस समय श्रोता सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ, गायिका हैं सरिता पंत।

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं एक और गढ़वाली लोकगीत से। कलाकार हैं संतोष खेतवाल।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में

0: द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली

0: हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
4: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है भंडार गृहों में अनाज सुरक्षा। जानकारी दे रही हैं श्रीमती रेनू सनवाल।
6: कृषक बंधुओं, कृषि उत्पादों का उत्पादन प्रायः मौसमी प्रकृति का होता है, परंतु इनकी मांग प्रत्येक मौसम में समय के अनुसार बनी रहती है। अतः अनाज फसलों की कटाई के बाद इनकी मांग के अनुरूप पूर्ति बनाए रखने के लिए इनका भंडारण आवश्यक हो जाता है। निश्चित रूप से उच्च उत्पादन वाली प्रजातियों एवं उन्नत उत्पादन तकनीकी के कारण आज अनाज उत्पादन बढ़ा है, परंतु वर्ष भर एवं लंबे समय तक इनकी पूर्ति के लिए अनाज को भंडार गृहों में सुरक्षित करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सन 1961 के एक अनुमान के अनुसार 960 लाख मीट्रिक टन अनाज रोग व कीटों से नष्ट हो गया। यदि इतना अनाज अच्छे से भंडारित किया जाता तो 3750 लाख लोगों को एक वर्ष का भरपूर अनाज मिल जाता। उत्तम भंडारण के अभाव में नमी, उच्च तापमान, कीट तथा

भंडारण आदि से उत्पादों में कमी आती है। अतः भंडार गृह और भंडारण साधनों का चयन और निर्माण अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि यथासंभव न्यूनतम भंडारण लागत पर अनाज को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की हानियों से बचाया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार भारतवर्ष में संपूर्ण खाद्यान्न के उत्पादन का लगभग 10% अंश नमी, कीटों आदि द्वारा भंडारण के समय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार किसानों के अतिरिक्त ही उत्तम भंडारण व्यवस्था का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बढ़ जाता है। अनाज का भंडारण अधिकांश कृषकों द्वारा परिवार के रहने के घर के ही एक या दो कमरों में किया जाता है, तथा इस कार्य में उपयुक्त भंडार गृह प्रायः स्थानीय सामग्री या मिट्टी के बने होते हैं। ये भंडार गृह प्रायः त्रुटिपूर्ण ढंग से बने होते हैं, फलस्वरूप नमी और कीटों से पर्याप्त बचाव न होने से अनाज की अत्यधिक हानि होती है। अतः यथासंभव वायुरोधी भंडार गृहों का ही प्रयोग कृषक बंधुओं आपको करना चाहिए, ताकि बाहरी नमी और कीटों से भंडारित अनाज सुरक्षित रह सके। ऐसे भंडार गृहों के वायुरोधी होने के कारण अनाज के साथ प्रवेश करने वाले कीट भी ऑक्सीजन की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा कृषकों के लिए उपयुक्त उत्तम अनाज भंडारों का विकास किया गया है। इसमें पंत नगर कुठला, धातु का धान्य कोष्ठ, पूसा धान्य कोष्ठ, सीमेंट धान्य कोष्ठ, लचीला पॉलिथीन धान्य कोष्ठ आदि मुख्य हैं। कृषकों को अपने देश की जलवायुगत दशाओं, भंडारण किए जाने वाले उत्पाद की प्रकृति व मात्रा व उपलब्ध पूंजी के आधार पर ही भंडार का चयन करना चाहिए। प्रायः स्वच्छ तथा सूखे अनाज को उचित ढंग से भंडारित करने पर हानिकारक कीटों से होने वाली हानि काफ़ी स्तर तक कम हो जाती है। कभी कभी इन सावधानियों के बावजूद भी ये हानिकारक कीट अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए भंडार गृहों में धूमन किया जा सकता है। धूम अत्यधिक वाष्पशील रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो सामान्य प्रयोग के लिए द्रव या टिकिया के रूप में मिलते हैं और वायु के संपर्क में आकर धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस धुएं में श्वास लेकर कीट नष्ट हो जाते हैं। अधिक प्रचलित धूमकों में एथिलीन डाइब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड तथा फॉस्फीन आदि प्रमुख हैं। कृषक बंधुओं, आप इन रसायनों की प्रयोग विधि, मात्रा एवं संबंधित सावधानियां इनके निर्माता द्वारा दिए गए सूची पत्र में अवश्य देख लें और तदनुसार इनका प्रयोग करें। छोटे भंडार गृहों में धूमक को अनाज के बीच में रख दिया जाता है, जबकि बड़े माल गोदामों में धूमन करने से पहले वहां के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि को भली भांति सील करके वायुरोधी बना देना चाहिए, जिससे धूम बाहर ना निकलकर संपूर्ण गोदाम या भंडार गृह में समान रूप से फैल सके। कभी कभी आवश्यकता होने पर संपूर्ण भंडार गृह या अलग अलग चट्टों को पॉलीथीन से भी भली प्रकार ढक दें। अधिकांश धूमक मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, अतः अनाज को उपयोग में लाने से पूर्व उसे 2-3 दिन खुली हवा में अवश्य रख दें। कृषक बंधु, ये तो रही भंडार घर में अनाज की कीटों से सुरक्षा की बात। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाने वाले जीवों में चूहों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक अनुमान के अनुसार चूहों द्वारा 30 से 40 लाख मिलियन टन खाद्यान्न नष्ट किया जाता है। चूहे जितना अधिक खाते हैं, उससे अधिक नुकसान अनाज को पहुंचाते हैं। इनका प्रकोप वर्ष भर खेत से लेकर गोदामों तक होता है। चूहे चालाक व शक्की स्वभाव के होते हैं। इनका प्रकोप मुख्यतः धान, गेहूं, चना, मटर, मूंगफली, बाजरा, गन्ना आदि फसल पर होता है। जरा सा भी संदेह होने पर चूहे किसी विशेष चीज को खाना छोड़ देते हैं। ये अधिकतर रात्रि के समय निकलते हैं। इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। जरा सी आवाज सुनकर ये तुरंत छिप जाते हैं। ये भूमि में, बिलों में या मकान की छतों के अंदर बिल बनाकर नालियों, गोदामों, घरेलू सामग्री तथा कूड़ा करकट के ढेरों में रहते हैं। चूहे साल भर बच्चे पैदा करते हैं। एक वर्ष में इनकी 4 पीढ़ियां पाई जाती हैं। अनुमान है कि एक जोड़ी चूहा एक वर्ष में 1,000 से 15,000 तक संख्या बढ़ा सकता है। चूहे निवास स्थान के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक तो घरेलू चूहे और दूसरे खेत के चूहे। ये चूहे बहुत सी घातक बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। इनके द्वारा लगभग 5 से 20% अनाज का नुकसान किया जाता है। भंडार गृहों को चूहों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कृषक बंधुओं, आप बिल खोदें और चूहों को मार दें।
तथा फसल

की प्रारंभिक अवस्था में मेड़ को पतली बनाएं ताकि चूहों को बिल बनाने के लिए जगह न मिल पाए। खेत के आसपास फसल अवशेष न रखें। स्थानीय स्तर पर बनी चूहेदानी का प्रयोग करें। यदि चूहे अधिक नुकसान कर रहे हैं तो जिंक फॉस्फाइड जैसे विष का प्रयोग करें। 100 ग्राम विष चारा बनाने के लिए 96 भाग गेहूं, मक्का या चावल का आटा लें और उसमें 2 ग्राम सरसों का तेल मिला दें। तत्पश्चात 2 ग्राम जिंक फॉस्फाइड मिलाएं और उसे अच्छी प्रकार से मिला लें। ध्यान रहे कि यह काम खुली जगह पर व हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर ही करें। कभी कभी इस चारे की महक चूहे को पता चल जाती है, अतः शुरू में 2-3 दिन तक बिना दवा मिला चारा ही रखना चाहिए। जब चूहे चारा खूब खाने लगे तो विष मिला चारा रखना चाहिए, लेकिन इस चारे को बच्चों की पहुंच से दूर अवश्य रखें। यदि चूहे बिल में हैं तो पहले दिन सभी बिलों का निरीक्षण करके हल्की मिट्टी से उन्हें बंद कर दें। दूसरे दिन पता लगाएं कि कितने बिलों में चूहा आ रहा है। तीसरे और चौथे दिन बिना विषयुक्त चारा दें और पांचवें दिन विषयुक्त चारा देकर उन्हें मारना चाहिए। आजकल बाजार में चूहों को मारने के लिए रोवन, जिसको ब्रोमोडाइलॉन 0.005% भी मिलता है, ये केक के रूप में मिलता है और इसके 6 भाग होते हैं। इन्हें तोड़कर भंडार ग्रहों में रखकर इनसे चूहे मरते हैं। भंडार ग्रहों को चूहे रोग और कीटों के अलावा जो है फफूंदी से भी नुकसान पहुंचता है। भंडार ग्रहों में यदि भंडारण के समय नमी अधिक है या भंडार ग्रहों की सफाई नहीं की गई है तो फफूंद के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसमें एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम समूह के फफूंद अधिक मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। भंडारित अनाज के बोरों में सफ़ेद भूरे रंग की फफूंदी दिखाई देती है और अनाज आपस में चिपके हुए दिखाई देते हैं, जो बाद में सड़ जाते हैं और विषाक्त भी हो जाते हैं। इनके प्रभाव से बीज अंकुरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अंकुरण नहीं हो पाता। बीजों का रंग बदल जाता है तथा भ्रूण सड़ जाता है। अनाज आपस में चिपक कर सड़न उत्पन्न करते हैं और केक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कई तरह के फफूंद विष भी बनाते हैं। विष मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। इनका उपयोग करने पर मृत्यु भी हो सकती है। अतः बीजों को जो बीज हैं उनको हमेशा लकड़ी के ऊपर ही रखें, उसके बोरों को, और अनाज को कम तापमान एवं कम नमी पर ही भंडारण करें। यदि फफूंद की संभावना हो तो अनाज को फफूंदी नाशक से उपचारित करें। अनाज को धूप में खूब सुखाकर एवं भंडार गृह और बोरों को अच्छी तरह सफाई करके ही भंडारित करें। नमी का अंश भंडारित करते समय 8-10% ही रखें। यदि भंडार गृह किसी कमरे में ना होकर बाहर खुले में रखना है तो इसकी बाहरी सतह को सफ़ेद और चिकनी कर देना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें इस पर से परावर्तित हो जाएं। नए तथा पुराने अनाज को एक साथ मिलाकर भंडार गृह में कदापि ना रखें। इसके अलावा क्षतिग्रस्त अनाज को साफ करके भंडार गृह में रखें, क्योंकि क्षतिग्रस्त अनाज में कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है। यदि कीट की भंडार गृह की छतों और दीवारों में रहने की संभावना है तो मेलाथियान नामक दवा 50 EC 10 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर भंडार गृह में छिड़कें। नए बोरों का ही प्रयोग करें भंडारण के लिए। यदि बोरे पुराने हैं तो उन्हें मेलाथियान 50 EC 5 ml प्रति लीटर पानी में 10 मिनट तक डुबाए रखें, फिर सुखाकर ही प्रयोग करें। कृषक बंधुओं, यदि आप बताए गए तरीकों का ध्यान रखकर भंडार गृह में अनाज भंडारित करेंगे तो अनाज सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखेंगे, क्योंकि अनाज उत्पादन से कहीं अधिक जरूरी अनाज सुरक्षा है।

भंडार गृहों में अनाज सुरक्षा, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में श्रीमती रेनू सनवाल से श्रोताओं ने सुनी जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज शाम 5:10 पर पीपल पद्म ऑफ आकाशवाणी, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे एन राजम से भेंट वार्ता। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन,

ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे नयन नाथ रावल। शाम 5:35 पर युवा साथी युवावाणी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मिशन लाइफ। इसके अलावा ई कचरा कम करें इस विषय पर भी चर्चा होगी। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा, जिसमें आज कलाकार होंगे बिजोय चौधरी और सुरेश वाटकर। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे, जिसमें आज की बातें होंगी कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग और चर्चा सुनिएगा सब्जी और पारंपरिक फसल उत्पादन के लाभ। फिल्म संगीत सायंकालीन सभा में श्रोता सुनेंगे शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। इसके अलावा रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सबरस में रात 8:00। इसके अलावा 10:00 भी आप सुगम संगीत सुनेंगे। श्रोता आज अपने फरमाइश के फिल्मी नगमे सुन सकते हैं आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के तहत रात 9:30 पर। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: AIR at 90.
1: कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

हम आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी। श्रोताओं, अपनी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बॉबी। 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली परवीन बॉबी की अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहीं।

0: श्रोतों, 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में जन्म हुआ परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद से अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से आगे की शिक्षा ग्रहण की। साल 1972 में परवीन बॉबी के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई और साल 1973 में चरित्र फिल्म से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र। और इस फिल्म में उनके साथ थे प्रमुख भूमिका में सलीम दुर्रानी। और बाद में जिस फिल्म ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दिलाई, उस फिल्म का नाम था दीवार।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

श्रोता, अपने दौर में परवीन बॉबी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उनकी अदाकारी भी बेमिसाल थी, बेजोड़ थी। और उनकी अभिनय क्षमता की बात अगर हम जानना चाहें तो केवल इतना कहना ही काफ़ी है कि करीब 10 फिल्मों में कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इनमें वो फिल्में थीं मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कालिया, मेरी आवाज़, सुनो, नमक हलाल, अशांति, खुद्दार, रंग बिरंगी जैसी फिल्में शामिल थीं। बहरहाल ये तो चंद फिल्मों के नाम हैं। परवीन बॉबी की और भी जितनी फिल्में आईं एक लंबी फहरिस्त हैं, सभी फिल्में एक से बढ़कर एक रहीं। और कुछ फिल्में तो ऐसी थीं कि उन पर फिल्माए गए एक गाने ने ही धूम मचा दी। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। करीब 8 फिल्मों में वो साथ नजर आए। 20 जनवरी 2005 को मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई।

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

फिल्म संगीत एक ही फनकार अभी श्रोता सुन रहे थे। आज फनकार थी मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न के बजे हैं 3। सदाबहार फिल्मी गीत लेकर हम हाजिर हैं।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांक्ति का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में एक ऐसे मशहूर संगीतकार हुए जिन्होंने खुद को कभी चमक दमक का हिस्सा बिल्कुल बनने नहीं दिया, लेकिन उनकी सुरीली मिठास भरी मनमोहक धुनों ने हर भारतीय का मन मस्तिष्क सुरीला बनाया। 80 और 90 के दशक में जब पारिवारिक और रोमांटिक फिल्मों का शानदार दौर था, तब उनकी बेहद सुरीली धुनों से सजे गीत लोगों के दिलों की सुरमई स्वर लहरी बन गई। उनके संगीत ने रिश्तों, अपनापन, स्नेह, ममत्व, माता पिता, भाई बहन, हर रिश्तों के स्नेह के तारों को सुरों में पिरो दिया। उनकी खासियत थी सरल शब्दों में ऐसी धुनें तैयार करना जो सीधे दर्शकों के दिलों में उतर जाए। श्रोता, आप जरूर सोच रहे होंगे जिनमें इतनी सारी खूबियां हैं, आखिर वो संगीतकार हैं कौन? तो आपका इंतजार हुआ खत्म। ऐसे मशहूर, सुप्रसिद्ध, जाने माने सुरीले संगीतकार को हम जानते हैं राम लक्ष्मण के नाम से, जिनका वास्तविक नाम था विजय पाटिल। आज 22 मई उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम श्रद्धा नमन करते हैं। और आज राम लक्ष्मण के संगीत से सजे खूबसूरत तरानों संग सदाबहार फिल्मी गीतों का सफर तय करते हैं।

तो श्रोताओं, मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण का जन्म 16 सितंबर 1942 को हुआ और उनका वास्तविक नाम, जैसा कि मैंने बताया, विजय पाटिल था। उन्होंने अपने पिता और चाचा से संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने भातखंडे शिक्षण संस्थान में संगीत की बारीकियां सीखीं। हिंदी फिल्मों के अलावा राम लक्ष्मण ने मराठी और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी काम किया था। और राम लक्ष्मण पहले इंडस्ट्री में लक्ष्मण के नाम से जाने जाते थे। इस बीच उन्होंने एक अन्य संगीतकार राम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और राम लक्ष्मण ने मिलकर संगीत देना शुरू किया। लेकिन साल 1976 में फिल्म एजेंट विनोद में गाना जब इन्होंने संगीत दिया, उसके बाद अचानक संगीतकार राम का निधन हो गया और बाद में संगीतकार लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल ने अपना पूरा नाम राम लक्ष्मण रख लिया और इसी नाम से वो फिल्मों में संगीत देने लगे।

श्रोताओ, मराठी फिल्ममेकर और मशहूर अभिनेता दादा कोंडके ने सबसे पहले अपनी फिल्म पांडु हवलदार में बतौर संगीतकार साइन किया राम लक्ष्मण को। इसके बाद सूरज बड़जात्या की फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। शुरुआत की उन्होंने साल 1989 में प्रदर्शित बेहद मशहूर सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया से। मैंने प्यार किया फिल्म जितनी हिट रही उतने ही मशहूर इस फिल्म के गाने हुए।

तो श्रोताओं, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले शुरुआत की जितनी भी सुपर डुपर हिट फिल्में रहीं, उन फिल्मों में सुरीला संगीत राम लक्ष्मण का ही रहा। मैंने प्यार किया के बाद आई बेहद मशहूर फिल्म साल 1994 में हम आपके हैं कौन, और इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के सुरीले संगीत को भी हर दौर में याद किया जाता है।

तो श्रोताओं, हम आपके हैं कौन फिल्म में अपना बेहतरीन शानदार संगीत देने के बाद राम लक्ष्मण ने साल 1999 में एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बहुत ही खूबसूरत संगीत से इस फिल्म को भी यादगार बना दिया और वो फिल्म थी हम साथ साथ हैं। और इस फिल्म के गाने भी आज भी हम ज़रूर गुनगुनाते हैं।

तो श्रोताओं, राम लक्ष्मण ने लगभग 150 फिल्मों में अपना शानदार, बेमिसाल, बेहतरीन संगीत दिया, जिसमें हिंदी के अलावा मराठी और भोजपुरी फिल्में भी शामिल रहीं। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनका संगीत कालजयी है, अमर है। याद कीजिए एक फिल्म 100 डेज, जिसके गाने जबरदस्त हिट रहे थे।

तो श्रोताओं, जैसा कि मैंने बताया, 150 फिल्मों पे उन्होंने संगीत दिया, जिनमें भोजपुरी और मराठी भी शामिल हैं। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की, जिसमें उन्होंने अपना शानदार संगीत दिया। और कुछ फिल्मों के नाम आपको याद दिला दें, जैसे मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, 100 डेज, प्रेम शक्ति, मेघा, तराना, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, उस्तादी, उस्ताद से, अनमोल, पत्थर के फूल, तराना, वर्तमान जैसी फिल्में शामिल हैं।

श्रोतों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया जैसे हिट फिल्मों का हिट संगीत राम लक्ष्मण ने दिया, वहीं एक फिल्म और आई इसी बैनर के तले, तराना। इस फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत भी, इस फिल्म के सुरीले तराने बेहद पसंद किए गए दर्शकों द्वारा, जिन्हें आज भी हम गुनगुनाना बिल्कुल नहीं भूलते।

तो शुद्ध 80 और 90 के दशक के धड़कन बन गए राम लक्ष्मण के सुरीले संगीत से बने एक से बढ़कर एक गाने। मराठी सिनेमा से शुरू हुआ उनका सफर हिंदी फिल्मों तक पहुंचा और उनकी सादगी भरी धुनों ने ना जाने कितने दर्शकों की यादों में हमेशा एक जगह बनाई उनके सुरीले तरानों ने।

तो श्रोतों, अपने 4 दशक से लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी और भोजपुरी में एक से बढ़कर एक गानों का संगीत तैयार किया और मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली, सूरज बड़जात्या जैसे जाने माने फिल्म निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। तो मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण 22 मई 2021 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए, लेकिन अपने सुरीले

तो श्रोताओं, आज सदाबहार फिल्म गीतों का सुरीला सफर यहीं तक। अंजू पांगती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और DGP से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद

0: ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शेल्सर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए नयननाथ रावल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

नैना थरावल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। इसी के साथ शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे उन्होंने कहा उसको मैंने सही समझा तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिराने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा तने रो मत, तुमको मिल गया। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते है तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाती रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं है,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी। तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था। तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह

0: क्योंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से, संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया। मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है,
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता है तो नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल आता है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे। अच्छा। मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को, तो बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं, तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वॉयलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वॉयलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात कर

0: आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
1: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन किया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
0: हाँ जी, हाँ।
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
0: बिल्कुल सही कहा
1: लोगों को
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में। बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में कर लोगी, तो कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वह उनको लोग बाहर जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य

0: जानते हैं, नाम सुना है उनका, एक लोग का लोग कहाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती है?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन की नींव है और जीवन की एक तरीके से सुंदरता भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की भी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। जैव विविधता का अर्थ हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह हर क्षण पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके बीच का संतुलन। यह केवल जंगलों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे खेतों, नदियों, पहाड़ों, यहाँ तक कि हमारे आसपास की हवा में भी मौजूद है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस जगह अभी हम बैठे हैं, खड़े हैं, उस जगह भी हवा में अदृश्य कई ऐसे जीव हैं जो जटिल तंत्र में हमारे आसपास मौजूद हैं और उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता इस आवरण में है। जैव विविधता असल में हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य का हक नहीं है, बल्कि मनुष्य उस हक का एकमात्र हिस्सा है। ऐसे अनगिनत अदृश्य दृश्य जीव जंतु इस धरा पर हैं और धरा पर उनका हक है। यही जैव विविधता दिवस हमें सिखाता है कि न केवल इंसान अपने भौतिक विकास के लिए इस धरा का शोषण करे, बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं को इस तरीके से उपयोग में लाए कि अन्य दृश्य अदृश्य जीव जगत भी संतुलन में रहे। हर साल 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि हम सभी को यह दिलाया जा सके याद

कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार, पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना जैसे तमाम समस्याएं हैं जिनके कारण हमारी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल और ऊर्जा का संरक्षण करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। इस साल यानी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। हम पर्वत प्रदेश यानी हिमालय के निवासी हैं और हिमालय की तीनों श्रेणियां यानी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के फैलाव में हम बसे हैं और विश्व के बहुत ही समृद्ध जैव विविध क्षेत्र जो कि शिवालिक हिमालय है उसमें भी हमारी मौजूदगी है। और इस वक्त जब उत्तर भारत, मध्य भारत गर्मी की तपिश से जूझ रहा है तो ठंडी हवा लेने के लिए हमारे सैलानी पहाड़ी प्रदेशों की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में दायित्व हम सब का बनता है कि हम जरूर इस पहाड़ी प्रदेश में आएं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमालय हो, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो, चाहे हिमाचल हो या कश्मीर हो, लेकिन हिमालय की आबोहवा को, हिमालय की धरा को, हिमालय की मिट्टी को, हिमालय के पेड़ों को, हिमालय के वन्य जीवों को, हिमालय की पारितंत्र को वैसा ही रखें जैसा वो है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण न करें। जैव विविधता पर आज दुनिया भर में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें, समिट्स और सेमिनार्स हो रही हैं जहां एक आम आदमी से लेकर पर्यावरण का विद्वान अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन आम समझ यही होनी चाहिए कि जिस पृथ्वी पर, जिस जगह पर हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसकी पर्यावरण को किसी भी तरीके से हम प्रदूषित न करें। यही इस कार्यक्रम की, आज के दिवस की सीख होगी। कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, हमारा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या थी? इस सवाल का सही जवाब आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। इन्हीं गीतों, इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त नीरज को दीजिए आज के कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनीर सब श्रोतान के गोकुलक नमस्कार। श्रोताओं, पीएम मुद्रा योजना बात करूँ तो यह अंतर्गत भारत सरकार गैर कृषि, गैर कॉर्पोरेट या नान व्यवसाय करने वालों के बिना कोई गारंटी 20 लाख तक लोन दी। ये योजना में विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। मुद्रा लोन चार मुख्य श्रेणी में छिन्न, जैसे शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 एक बे 5 लाख तक, तरुण 5 लाख बे 10 लाख तक, तरुण प्लस 10/20 लाख तक। तरुण प्लस लोन उ लोग नग लीजिए छ जनुल पहली तरुण श्रेणी लोन लिबेर उके भली के जमकर हलो, मतलब जो तुम पहली 10 लाख तक, जो 5 लाख बस 10 लाख तक जो लोन रखो, अगर उका आप भली के जमकर रखो तो एक बाद आप 10/20 लाख तक जो लोन तरुण प्लस जो लोन छ यो मिल सकू। ब्याज आप क्रेडिट स्कोर हिसाब तय हो। पात्रता यो लोग ले सकनी जो दुकानदार छन, वेडर्स छन, छठ चीज बढ़ोने वाले छन, कारीगर छन, कृषि में जुड़ी हुई जैसी डेयरी दूध, जैसे डेयरी और पोल्ट्री फार्म आपको खोलना चाहना है तो वीक लीजिए यो लोन आपको मिल सकूँ। आवेदन लीजिए आपको सार्वजनिक निजी बैंकों, क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI नजदीकी शाखा में संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन लीजिए आपू जनसमर्थ पोर्टल या उद्यम मित्र पोर्टल माध्यम डिजिटल रूप में आवेदन कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज जो काम आपको करना है वे एक बार में पूरी जानकारी दें, पहचान और पत्र प्रमाण, पिछले सालों बैलेंस शीट जो काम अपुल कर रखो, बैलेंस शीट अगर अपुल बड़ा रखी तो, और दगड़ में आय प्रमाण पत्र आपको में दिन पड़ो, और योजना में जुड़ी सब जानकारी आधिकारिक मुद्रा योजना वेबसाइट में आपको देख सकता। तो कोई ले हम रोजगार अगर करना चाहूँ तो सरकार लिए तैयार छो, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम अपनों रोजगार चुनू और अपने घर में हम रोजगार खुल बेर हम उनका इतक उतक जाने जरूरत नहीं पड़ो और हम अपन आर्थिक स्थिति का मजबूत बढ़ा सकूँ। तो ये तो छी आज एक बात आओ कार्यक्रम में आपको सुनू सुरेश प्रसाद सुरीला गई योगी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रममा आफूको सुन्न लाग्या इलेक्ट्रोनिक्स कचरा बारेमा पूर्व प्रधानाचार्य श्री नारायण सिंह थापाज्यू देख क्षेत्र संकलित यो भेटवार्ता।
2: श्रोताओं, आज हम बात करण लाग्या पूर्व प्रधानाध्यापक श्री नारायण सिंह थापाजी देखो। थापाजी, हम रिड्यूस ई वेस्ट बात करनी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान से जो खराब है जाए बारे में आप थोड़ा बहुत हमें सुनने वालों को बता ला।
3: देखो, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान से हम यूज कर लो ठीक है, हम उन यूज कर आज समय इलेक्ट्रॉनिक जमान से, मगर उनमें कुछ सावधानी हमन को बरतन पड़े। नंबर एक ये जो हम पुराना मोबाइल से लैपटॉप से मुख्य चीज में हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक में हमारे जो जब हम पूरा अपन ये लगाओ कि हमारे खाता खतौनी खाल खाते सब भी में है, मतलब उसमें उमा हमारे बैंक अकाउंट नंबर लूँ, उमा हमारे तुम्हारा तो पैन कार्ड हूँ, आधार कार्ड हूँ, अन्य कुछ छ यात्रा की फोटो हमारे जो बाल बाल फोटो छा, मगर वो जब हम दिन से हम सोचल कि यो जो हम डिलीट कर लूँ मोबाइल सब चीज डिलीट हो, लैपटॉप में सब डिलीट हो, मगर वो डिलीट नहीं हो। अगर हम लोग के या कपार की बेटी जब अपन वहाँ ले जा लो पूरा डाटा फिर निकाल जब तुम्हारे पूरा डाटा भी पास मौजूद रहो, वो खतरे भाई वो अपन के में भाई बैंक को खतरे भाई तुम्हारे आईडी यूज कर सकूं, तुम्हारे आधार कार्ड यूज कर सकूं, पैन कार्ड यूज कर सकूं, जितना तुम्हारे डाटा सब भी सब यूज कर लो तुम उनके ब्लैकमेल कर सकूं, यो छे यो छे यो छे तुम देखना चाहो। आजकल देखो बैंक बड़ी डबल कैसे निकाल दी नहीं सब है का जनो, तो ये लीजिए नंबर एक सावधानी तो करना पड़ेगा। तो ठीक से चलो, अब हम नीति कह गए, अब हम तक खड़ी नहीं सकना या बजाऊ जरूरी पड़ो, अब बजाओला तुम होगा जैसे कोई तुम्हारा मोबाइल तुमको दूसरी जरूरत है तुम वो मोबाइल कंपनी में जाला उनसे कहला यो मेरे पास यो कंपनी यो मोबाइल से, चाहे वो तुम उनके दूरबा सस्ते का पड़ लो वो तुम जला वो तुम सुरक्षित रहला, वो मोबाइल कंपनी तुम उनके मोबाइल दे और तुम्हार उलझल उम्र तुम्हार सार पक पर्ची दे वे डेटा जो है वो क्या यूज नहीं कर सकन, वो मोबाइल वो यूज नहीं कर सकन।
2: बिल्कुल सही बात, जैसे हमें बहुत सारे लोगों के ये मालूम नहीं रहूँ कि वो सामान गया तो खेड़ देनी या कुछ के क्या कर देनी, खेड़ देनी तो उनको एक जो भीतर जो बहुत सारे जैसे उनमें ताप हो कई चीज होनी जो कीमती होनी उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होनी।
3: अरे जो हम छोड़ दिनों ना कोई चीज के, अगर ये मोबाइल चतुला हमारे कीमती कीमती मोबाइल छन लैपटॉप छन तनार भी थे जो टैग जो चल नहीं जाए तो तनन में शीशा पार हूँ सुन हूँ चांदी है ताम हूँ ये तो चीज तय भी थे होनी, अगर हम उनको जला ले दूनो फिर लोग सुरक्षित रहूनी, ये लीजिए जगह हम दून उधर हम उनके यो जानकारी हो जाए भैया इसके अंदर यो यो चीज छे बतून हो गए ओके यो कॉल की आवश्यक में यह जानकारी छे। दूसरे अगर चलो हम नीति कह गए बिल्कुल जब तक टूटा भी इसको तक भजा दिन या जगह दिन, अब

0: अगर जरूर लेनी चाहिए सबसे खतरनाक पूरे पर्यावरण पूरी एरिया जेतु हमर अड़ोस पड़ोस एरिया छे वो तो एरिया जो छे प्रदूषित हो जाए देखो ताकि जरूर में सांसे बीमारी हृदय रोग और अन्य कतु बीमारी होनी यहाँ तक की खतरनाक बीमारी तक जो धूम निकाऊ तक जो धूम फैलू कैंसर एक बीमारी ले तैर पन पे और ज्यादातर हमारे जो नन नन दिन छन उनर कोमल अंग भीतर जो सांस जे कोमल ताल जे उन्हें लीजिए तो ज्यादा खतर ये लीजिए तन के अगर हम कह के दूँ उनके पहले तो हम मोबाइल वाव को दूँ लैपटॉप वाव को लैपटॉप को दे दूँ अगर फिर कह गला हम जो कबाड़ वाव वी पंजीकरण हो चल सरकार आजकल कबाड़ वाव के पंजीकरण हो वी पंजीकरण नंबर हो वो रसीद काटो तब उनके दिन छे
1: बहुत सारा हमारे घर में जैसे लैपटॉप छे या मोबाइल छे उनमें थोड़ा सा खराबी है कि हम उनका कहीं पानी में खरीद दूँ पर हम ये नहीं सोचते यार चलो ये कहकर जरूरत में काम है जो ठीक कर लो हम ये कर खराब होगा दूसरा नहीं की मेरे हिसाब से एक जगह कहीं ना कहीं मिसयूज मतलब जबकि भाई हमें बात हम ठीक कर सकूं
0: बिल्कुल
1: नहीं हम उनके लेने की जरूरत
0: बिल्कुल बिल्कुल उले भल जानकार है बाहर जाबे हर दुकानदार जो जानकार थे जो बड़ों जो लैपटॉप बड़ों जो रेडियो आप देख सकता रही पुराने रेडियो बड़ोनी लैपटॉप बड़ोनी मोबाइल बड़ोनी अन्य कोई चीज ले वो बड़ोनी वी के भल जानकार है बाहर जान से और जस्ट जैसे हम हमारे मोबाइल में 200 रुपए लगी मान लीजिए जो अब हम 200 रुपए में नहीं चलाओ हम क्यों करूँ 15,000 मोबाइल छोड़ दिनो न वो नहीं चलन 200 रुपए दिखाओ वो ठीक करो खुद बता लो ये तो साल आई चलो लो कभी तो वीक ले ध्यान देना जरूरी है एकदम मुझे पटकनी चाहिए छोड़नी चाहिए और जो तुम्हें भीतर पर जो बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान छे चाहे वो बल्ब छे पुराने रेडियो छे पुरानी घड़ी छे देखो आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चल गई उले खतरनाक छे अगर वो बिल्कुल खराब होनी तो उले कोई भल कंपनी के उनको दिया हो जो तुले धनराशि दिया तो मन के ये मैं यस इलेक्ट्रॉनिक जो घर चल रही है आजकल देखो अब जरा खराब है क्या बिल्कुल तो कीड़ से तथी खिड़ियों को तो बाढ़ में खिड़ियों तो आग लगा तो जल लेती हो बहुत खराब बाढ़ में तो जो तुम कीड़ जला ला वो तो ठीक है मगर घड़ी जो घर जले ली वीक जो मेटेरियल जला लो वीक आस पास और पर्यावरण बहुत दूषित हो बहुत बहुत भयंकर बीमारी तैर के फैले जबकि सांस मुख्य तो सांस वाली भी बीमारी है ये लीजिए बर्बाद नहीं करना चाहिए क्षण नहीं चाहिए अपन मन उनके यूनिकॉर्न चाहिए जो खराब वो दिखा भी जटिल है तुम्हारो से उदी आप उनके दिखा लियो और भी बात जो सुन बतू उस अपन करण से
1: बिल्कुल सही बात कोनो मतलब हमने ये हो कि जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान छे अगर वो सही है सब तो कम से कम हम उनके उपयोग करना चाहिए हम उनके दूसरे नई लेने की जरूरत है
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम नई लून उतर डबल फिर लगा हम थोड़ा बहुत ठीक कर लू तो काम है
0: बिल्कुल आई यूरसेट बाजार में चल लो यूरसेट ठग भी दिया चल रहा है बिल्कुल तुम्हें 200 रुपए खर्च हो लो बस बेकार हो गया है इसको यहाँ रख जाओ तुमको नया दे देते हैं तो यो नहीं होना चाहिए भल दुकानदार थे 10,000 पूछना चाहिए जो खराब रहो नहीं है फिर आजकल नानतीन से पढ़े लिखे छे जानकार छे वो सब पत्र कर लेनी ये लीजिए जरा जरा चीजें में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो छे वो बहुत साल चलो चल आप फ्रिज छे फ्रिज जरा सी ये खराब हो गयो हमको ठीक कर लो वो सालो चलो वॉशिंग मशीन से जरा सी वीक मोटर जरा सी खराब है जी कनेक्शन खराब हो गयो उस आलू चलो इसके हमारे मोबाइल से जरा खराब हो गयो वो ठीक कर ले उस आलू चलो ये तो अब घर से हमारे घर ले खराब है गई है सब उम्र साल खत्म से एक 100 रुपए की साल खत्म से वो एकदम दे बेचने जला वो कोई खत्म है उम्र साल पर लो दूसरा मगर उम्र साल पर भी देख लियो चेक कर लियो बोले सालू चलो ये लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के लेने में सावधानी बरतना चाहिए दिल मेले सावधानी बरतना चाहिए और जो खराब है वो ठीक करने मेले सावधानी बरतना चाहिए यस
1: बहुत सही अपन हम उनको बता और हम उनको उम्मीद है कि हमें सुनने वाले आपको बात उनके समझ दो ना तो अपन हम उनको जानकारी दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: श्रोताओं अल्लाह सुने क्षेत्र संकलित यह बातचीत कार्यक्रम में आपको सुनू महिपाल सिंह मेहता और ज्योति प्रीति गई योगी।

जानू ने पाला मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मैं जानू ने पाला मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट

लपे मौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू।

दपै पूजी रे छकुना मेरी जमुना साई चुम चुमा

श्रोताओं, अल्लाह भयो गीत सुने छे गायक छी महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रेती। श्रोताओं, बात करनू मिशन लाइफ है। भारतक नेतृत्व वाल एक वैश्विक जन आंदोलन छे जो जलवायु परिवर्तन बे निपटने लीजिए लोगों का अपनों दैनिक जीवन शैली में पर्यावरण अनुकूल बढ़ूँ न लीजिए प्रेरित करूँ। यह एक उद्देश्य उपयोग करो और फेंको एक मानसिकता का बदल बीर एक स्थायी और जागरूक जीवन शैली का अपनों छे। हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करनू और बायो को खेड़ दिनू तो उका हम उन बदलन छे। अब यह शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूल 1 नवंबर 2021 हूँ ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में करें। यह एक बार अक्टूबर 2022 में गुजरात तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में एक आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगो। मिशन जो लाइफ जो मुख्य विषय छन यो 7 मुख्य श्रेणी में छन। लगभग 75 व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्य को बढ़ावा देने जैसे कि ऊर्जा बचाओ, हम बिजली का हम बचा सकनों, LED बल्ब ना हम प्रयोग करना चाहे हम उनका, और पंख या लाइट जबरदस्ती हम उन पंख छोड़ खोल रखो और हम भैर जरिया पंख चल रहो, मतलब कुड़ा मतलब कि बेवजह कोई चीज़ हम उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर पंख हम जरूरत है तो हम पंख बंद कर दूँ और बिना कोशिश करूँ कि एक जरूरत कम पड़ो। और पानी की बात करूँ तो पानी हम उनका हिसाबल खर्च करना चाहें, बाल्टी नहाँ चाहें, नल का खुली नहीं धरना चाहें। और जो हमार कूड़ हूँ जैसे गिल कूड़ छो, गिल कूड़ का हम अलग धर लूँ और सुख कूड़ का अलग कर दूँ। और हर सुख कूड़ल हमार और चीज़ लग बढ़ जुगो जो सुख कीड़ छ कूड़ छ। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण छन उनर उपयोग पूर्व उपयोग करना चाहें और उनका रिसाइकिल करना चाहें। एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग करना चाहें, मतलब जो हमारे प्लास्टिक का थैलन में हम सामान लूँ उनका हम बंद करना चाहें और वो हमारे पर्यावरण लीजिए नुकसानदायक से और हमारे खेतों लीजिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर हम उनको जलूँ तो वीक जो कार्बन छो हमारे लीजिए हमारे सांस के लीजिए बहुत नुकसानदायक से। तो किलना हम अपन जबले सामान लेने जानू तो एक घर बे एक झल ले जाने में हम उनके की दिक्कत है। तो कपड़ों न झल न हम इस्तेमाल करें छे। और जो खाद्य प्रणाली का जैसी स्थानीय जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र में जो चीज़ है एक उपयोग ज़्यादा करना चाहिए हम उनका और उनका बढ़ावा देना चाहें। मॉडर्नाइज छन और उनका हम उनका ज़्यादा एक सेवन करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य लीजिए बहुत लाभदायक है। स्वस्थ जीवन शैली का अपनाना लीजिए, हम उनका पैदल चलने जरूरत है, साइकिल चलाओ, साइकिल चला सकता मतलब अनावश्यक हम उनका थोड़ा सा दूर जानिए तो हम

अगर नानती ने भी आदत पड़ने आजकल देखनी, हम जरा सला दूर जान पड़ना छो स्कूटर मोटरसाइकिल ना इस्तेमाल करनी, तो केला ना उन पर अल्ले बटे आदत बढ़ाओ कि यार थोड़ा सा दूर पैदल ले जा सकता। तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा हम पैदल चलना तो हम स्वस्थ रहूँ। यह मिशन लक्ष्य छ प्रो प्लेनेट पीपल, यश लोगों का एक वैश्विक समुदाय बढ़ोन छ जो पृथ्वी प्रति जिम्मेदारी समझो और जीवन में छोट छोट बदलाव के जरिए कार्बन फुटप्रिंट के कम करने में योगदान दियो। मिशन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने लीजिए, जुड़ने लीजिए आप हूँ मिशन लाइफ अधिकारी वेबसाइट में देख सकता। तो हम उनका अपने जीवन शैली में यो बदलाव करने की आवश्यकता छ जो हमारे स्वास्थ्य लीजिए लिए बहुत भल छ और हमारे जो पर्यावरण छ वी लीजिए बहुत भल छ। तो हम उनका यो बात ध्यान धरना चाहें और छोट छोट चीज़ में अगर हम ध्यान धरने निश्चित तौर पर हम उनका कोई यह समस्या नहीं आए और उन्हीं वाल जो हमारे जो नानतीन छन उनका एक भल रस्त उन्होंने लीजिए होल भल आबोहवा उन्हें लीजिए हुई तो थोड़ा सा हम उनमें जागरूकता होना चाहिए और नानतीन उनका इनमें जागरूक करना चाहिए।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनिए गीत, गायक संदीप सोनू।

श्रोताओं, अल्लाह फयो गीत सुनी छा गायक जी संदीप सोनू कार्यक्रम में आपको एक और गीत सुनू, गायक छन शंकर उपेती और दगड़ी।

श्रोताओं, शंकर उपृति और दगड़ी न गई यह गीत का दगड़ आज उत्तरायण कार्यक्रम इतिगर संपन्न हूँ। प्रस्तुति छी संजय जोशी। गूगल का आज्ञा दियो। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी को मौके पर पहुँचने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतल खेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया। श्री धामी ने फायर लाइन के आसपास छोटी छोटी तलैया बनाने, वनाग्नि रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने तथा आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1000 नई नियुक्तियों के जारी करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही ग्राम समितियों और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए नियमानुसार आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के प्रत्येक डिवीजन में पशु चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पेयजल, स्वास्थ्य और मानसून तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज से 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के 179 गोल्फर भाग ले रहे हैं। इस वर्ष की प्रतियोगिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित किया गया है। शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करने वाला खेल है तथा प्रधानमंत्री के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को नई दिशा दे रहा है।
4: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए, खेलो इंडिया, और उनका विजन कितना सुंदर है जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो आपकी जो खुद

0: भी प्रगति होगा, विकास होगा, वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं को मिलने जा रहे नियुक्ति पत्र इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, लगन और संकल्प का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नौकरी में चयन मेहनत और प्रतिभा से हो रहा है और ये नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
2: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों की महिला समूह के उद्यम परिवारों को लगभग 14 लाख रुपए के आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को पुनः सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान रीप परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने पर्चा काउंटर, OPD, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। श्री उनियाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को दवाइयाँ बाहर से खरीदने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
4: नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूँ जो कि हम में अच्छे डॉक्टर्स हैं और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जो सेवाएं दे रहे हैं, मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं।
1: चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आज पंच प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा कि यह जत्था आज रात घंघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे।
5: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
1: उधर हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर बेहद

0: उत्साहित दिखाई दिए।
1: बहुत उत्साह है संगत के अंदर, रात भी इतनी भीड़ थी, सुबह भी इतनी भीड़ हो रही है और बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि लास्ट जो टाइम आया था मैं 10 साल पहले आया था, 3-4 बार मैं आ चुका हूँ, इस टाइम मैंने उत्साह जो देखा है बहुत टाइम बाद देखा, बहुत ज्यादा संगत है।
0: रुद्रप्रयाग जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और वन संपदा की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में जखोली रेंज के वन क्षेत्र में आग लगाने वाले एक व्यक्ति को ड्रोन निगरानी के माध्यम से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने आरोपित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि विभाग का प्राथमिक उद्देश्य आमजन के सहयोग से वनाग्नि की घटनाओं को रोकना और लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस फायर सीजन में अब तक 13 मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पहली प्रस्तुति में बिजोई चौधरी के स्वर में ये भक्ति वंदन।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आइए आप सुनते हैं सुरेश वाडेकर को।
1: दुख तो है बस एक सहारा, तुझको कराता याद सदा। दुख तो है बस एक सहारा, तुझको कराता याद सदा। सुख में तो मैं भूलूं सब कुछ, तू भी हो जाता है दूर। सुख तो मुझको अंधा करता, डूब स्वार्थ मैं जाता हूं। दुख में ऐसा अद्भुत सुख है, दुख में ऐसा अद्भुत सुख है, संग तेरा मैं पाता हूं।

श्रोताओं, इसी भक्ति वंदन के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे देहरादून केंद्र से गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटीन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतूड़ी। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन नैनीताल मा 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलन लगिया विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को निरीक्षण करी। और चमोली जिला में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहलू जत्था हेमकुंड तय निकली। भोल खुल्ला कपाट। अब समाचार विस्तार से। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज बटिन 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन टी ऑफ कर प्रतियोगिता को शुभारंभ करी। 3 दिनों तक चलन वाला ये प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों का 179 गोल्फर भाग लेना छन। ये साल की प्रतियोगिता प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति में समर्पित छ। शुभारंभ अवसर पर राज्यपालन बोली गोल्फ धैर्य अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करने वालू खेल छ। और प्रधानमंत्री का फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान तय अगिन बढ़ोन और युवाओं ते नई दिशा देनुच।
1: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए खेलो इंडिया, और उनका विजन कितना सुंदर है जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो आपकी जो खुद की भी प्रगति होगा विकास होगा वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री बोली आज युवाओं तय मिलन लगिया नियुक्ति पत्र, ये बात को प्रमाण च कि राज्य सरकार उनका सपनों तय पूरू करनी च। उन बोली यू नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत लगन और संकल्प को सम्मान च। मुख्यमंत्री बोली राज्य सरकार ने देश को सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करी जैका परिणाम सामणी आना छन। और उन बोली कि आज नौकरी चयन मेहनत और प्रतिभा से होनी च और यू नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत बननी च।
2: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
0: प्रदेश का विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में कई यन होम स्टे सामणी एन जू निर्धारित नियमों का विपरीत होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की 4

0: चलना छन। जिला प्रशासन और पर्यटन विभागन ये तय गंभीरता से लेनी और नियमों को उल्लंघन करने वाला होम स्टे को पंजीकरण निरस्त करी। पर्यटन सचिव धीराज गर्भ्यालन बोली कि नियमों को उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रैली। उन बताए कि राज्य मंत्रिमंडल होम स्टे तय बढ़ावा देण खुण 8 कमरों तक का आवासों तय भी योजना का तहत आवेदन की अनुमति देनी च, पर सभी इकाइयों खुण पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रोलू।
1: होम स्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होम

0: आवेदन की अनुमति देनी चे, पर सभी इकाइयों खून पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रोलू।
1: होम स्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होम स्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होम स्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होम स्टे चला रहे हैं, तो उनको BNB के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए हैं।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून जिला का सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चलन लगिया विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को स्थलीय निरीक्षण करी। ये दौरान उन जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग का अधिकारियों ते आगामी बरसात ते देखी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों ते प्राथमिकता का आधार पर जल्दी पूरा करने का निर्देश देनी। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा की स्थिति को जायजा लेंदो अधिकारियों ते तत्काल ये को चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने का निर्देश देनी। उन बोली की बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों ते समयबद्ध तरीके से पूरा करन बहुत जरूरी चाहिए, इससे भविष्य में कै भी प्रकार की आपदा से होने वाला नुकसान तय कम कर सको। उन बोली कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास और सुरक्षा तय लेकी गंभीर च और जनहित से जुड़िया कार्यों में कै प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होली। चमोली जिला में स्थित हेमकुंड साहिब की यात्रा खुण आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर ध्वनि का बीच सिख श्रद्धालुओं को पहलू जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तय निकली। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंधक सेवा सिंघन बोली कि यू जत्था आज रात घांगरिया स्थित गुरुद्वारा मां विश्राम कर लू, ये का बाद भोल हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं खुण दर्शनाथ खोली जाला।
3: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
0: वखी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जान वाला श्रद्धालु यात्रा ते लेकी बहुत उत्साहित छन। यात्रा ते सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनोण का खातिर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भला इंतजाम करिया छन। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करी। अधिकारियों ते समयबद्ध पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनोण का निर्देश देनी। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्था, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों का निस्तारण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करी।
4: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDM तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के सभी के साथ में बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलन लगिया विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को निरीक्षण करी और चमोली जिला में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहलू जत्था हेमकुंड साहिब तय निकली। भोल खुला कपाट।

0: ये का साथ ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुन लिए सभी श्रोताओं के लता कपूरक नमस्कार स्वागत छू श्रोताओं आपको सपनक हमारे कार्यक्रम में। श्रोताओं हमारे जो किसान भाई बड़ी खेतपात करनी उनूल देखनोल की अब जो जैसे वो पहली वे पारंपरिक ढंगल काम कर छी लेकिन आजकल हम देखनो जो विकसित भारत छू आज यहाँ हर चीज़ में बदलाव है गो और हर नान ठूल क्षेत्र में बदलाव हम देखने लग रही हूँ और उसे बदलाव खेतपात में ले आप देखने मिलने लग रहा हूँ। जिसके कृषि क्षेत्र में हम अगर बात करूँ तो कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होने लग रहा जल की फसलों की पैदावार बढ़ो और जो पानी छू और उर्वरकों की बचत है सको और उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन जो हो छू बहुत ज़्यादा हो और फल हो यल की कृषि व्यवसाय जो छू वो कुशल हो लाभदायक हो और जलवायु अनुकूल हो। तो आजकल खेतपात मेले हम देख लूँ कि नई नई कृषि यंत्र छन उनर प्रयोग हण लग रो और नई जो शोधित बीज हनी उनर प्रयोग हण लग रो और सिंचाई की अगर हम बात करूँ तो सिंचाई येल हम उगे बहुत सारा लाभ ले छन। जैसे कि नई चीज़ों का अगर हम प्रयोग कर लूँ जहाँ बहुत ज़्यादा खेतपात हैं वहाँ अगर हम यो यंत्रों की आधुनिक कृषि नवीन जो कृषि तकनीक जो वीक अगर बात करूँ तो उनमें हमके लाभ है सकूँ कि लेकिन येल अगर हम यो सब प्रयोग कर लूँ और इनर द्वारा हम अगर खेतपात कर लूँ तो येल कहूँ कि हमार जो वक़्त छू वो बचूँ और बची हुई वक़्त में हम अपन मनपसंदक कोई ले काम कर सकूँ और कोई नई नई चीज़ हम सीख सकूँ। अगर हम ये कृषि जो आधुनिक नवीनी तकनीक छन कृषि में अगर इनर हम प्रयोग कर लूँ तो येल हमके जो छू बहुत ज़्यादा फायदा सकूँ। जैसे कि सिंचाई अगर हम करण जानूँ तो सिंचाई में ले तकनीक है गई जो कि माट में नमी सही सही पत लगे सकनी कि कतु उनके पानी चें कतु नीचे और वी के दगर दगर हम देख लूँ आजकल ड्रोन अगर एगो और व्हील जो ठुल ठुल किसान हनी और वो कीटनाशक का प्रयोग करनी छिड़काव करने के लिए ताकि सब जगह बराबर छिड़काव है सको और फसल जो छू माटक सेहत के छू ये सब जो छू व्हील हमके पत चल सको तो यह काम ले बहुत आसानी है जा। और वी के दगड़ दगड़ हम ये देख लूँ कि उत्पादन लागत में जो छू जो लागत लागे हम उत्पादन करने में वो कम है जे कि लेकिन यह सब नई तकनीकों जो छू उत्पादन बढ़ो और उत्पादन लागत में कमी है जे और वी के दगड़ दगड़ समय और श्रम जो हम उनको वो बचूँ और लेकिन मशीनों द्वारा काम हो तो समय और श्रम हमार मेहनत जो है बच जाए ये किसान भाई बहनी आप कोई अन्य चीज़ों कर सकनी कोई अन्य काम कर सकनी। और वी के दगर दगर पर्यावरण संरक्षण जिसके आधुनिक जैविक तकनीकों और जो छन इनर प्रयोग अगर हम कर लूँ तो व्हील जो छू हमार जो जो छू पर्यावरण छू उके प्रदूषित थन अभी हम रोक सक लूँ। तो भारत सरकार ले कृषि क्षेत्र में तकनीकी रूप के तकनीकी जो प्रयोग छू उके ज़्यादा बढ़ावा दे ताकि हमार जो किसान भाई छू उनर मेहनत कम लागो और वक्त तक बचत हो। तो ये सब कार्यक्रम हमारे जो भारत सरकार

द्वारा चलाई जाने लग रही। तो अगर कई कई किसान भाई बहनों के अगर इनर ज्ञान नहीं है तो जो तकनीकी जो कृषि केंद्र छुआ जबेर आप लोग यो नई नई कृषि तकनीक छन, नई नई कृषि यंत्र छन और शोधित बीज हनी और कस खाद जो छू माटक जाँच छू ये सब आप पत्र कर सकता और आप खेतों में ये प्रयोग कर बे भल उत्पादन ले सकता। तो श्रोताओ कार्यक्रम में हम बातचीत तो अघिन ले आपू दगड़ करते रहो एल आपू के सुनानू यो गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अलापुर सुरेश प्रसाद गाई हुई योग गीत सुनो और अब आपको सुना लें कार्यक्रम में क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता साग सब्जी उत्पादन और धानक फसल पर करी गई बातचीत श्रीमती पुष्पा केड़ा सोमेश्वर योग क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता करें और इन्हें दगड़ बातचीत करने लग रही लता कपूर।
1: आपका नाम?
2: मेरा नाम पुष्पा कड़ा है।
1: अच्छा, क्या करते हो?
2: मैं भी खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
1: तो खेती में आजकल क्या क्या लगा रखा है आपने गर्मी के सीजन में?
2: खेती में लगा रखी है आजकल गेहूँ काट दिखे वो धान बो दिए, धान और वो फट उरद ये चीजें बो दिए।
1: रहते हो?
2: हम सोमेश्वर में रहते, मेसरी में है, मीन सोमेश्वर।
1: अच्छा अच्छा, तो गर्मी में क्या क्या लगा रखा कहा आपने?
2: गर्मी में हमने लगाए थे गेहूं, आलू और ये मटर वगैरह। हाँ, उनकी फसल काट के अब ये धान की सिंचाई।
1: अच्छा, धानों की सिंचाई।
2: खेत कोई थे, खेत में धान लगा बो दिए, कोई तैयारी हो रही है।
1: तो रुपाई वाले धान बोते हैं आप वैसे?
2: हाँ हाँ, रुपाई वाले वो रख दिए, वो बिनौड़ रख देते हैं, फिर उनको पानी डाल के धान लगाते हैं।
1: अच्छा, रुपाई हो गई फिर अब?
2: रुपाई अभी हाँ इस महीने में होगी, लास्ट मतलब जून के लास्ट में।
1: अच्छा, तो अब सिंचाई हो रही होगी ना?
2: आजकल सिंचाई हो रही है और वो रख दिया धान के बीज रख दिया ना, एक एक खेत में धान का बीज रख दिया, बाद में वो धान का बीज लगाने के लायक हो जाता तो पानी डाल के उसको लगा दिया।
1: साग सब्जी में क्या क्या लगा रखा?
2: साग सब्जी में आजकल आलू तो खुदाई हो गई आलू की, अब साग सब्जी में यही लगाते हैं, शिमला मिर्च, बैंगन, लौकी, कद्दू।
1: अच्छा,
2: आजकल तो यही थी बीन्स जो आजकल की सब्जियां होती है।
1: कितनी बड़ी हो गई फिर?
2: बीन्स तो लगने लग गई, बीन्स शिमला मिर्च लगने लग गई, कहीं कहीं पे लौकी भी लगने लगी।
1: हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये सब्जियां आप कब तक तैयार हो जाएंगी?
2: ये हो जाएंगे जुलाई में तैयार।
1: तो इसमें खाद कौन सी डालते हैं आप?
2: खाद ऐसे गोबर भी डालते हैं, गाय आय पाली थे, गाय भैंस पालते हैं, गोबर डालते हैं और एक खाद वो होती है यूरिया, और वो हाँ। यूरिया तो नहीं डालते हैं वैसे, ज्यादातर गोबर ही डालते हैं, एक दूसरी होती है काली खाद।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: उसको डालते हैं और ज्यादा ये बाजार वाली खाद नहीं डालते हैं, गोबर की।
1: गोबर की जैविक खाद जो होती है ना।
2: हाँ हाँ।
1: तो ये सब्जियां बाजार में भी बेचते हो या अपने खाने लायक?
2: खाने लायक आज बंदर और वो बरा वो ये सारी चीजें होने लग गई ना। तो थोड़ी हमारा हो ही जाता है, फिर भी लगा के।
1: अच्छा,
2: बेचने में किसी कोई बंदरों का वो चीजों का ध्यान रख के थोड़ा बचाव, उनसे बचा बचू के अपना निकालते हैं,
1: हो जाता है अपने घर के लिए ना।
2: हाँ हाँ, अपने घर के लिए हो ही जाता है सब्जी।
1: तो जो धान है ना बोए हैं आपने, कब तक तैयार हो जाएंगे आप?
2: वो अक्टूबर तक, सितम्बर अक्टूबर तक लास्ट हो जाता है।
1: अच्छा, तो धानों में कितनी बार गुड़ाई वगैरह करते हो आप? गुड़ाई निराई जो है
2: दो तीन बार गुड़ाई होती है उनकी।
1: हाँ, और कितनी बार होती है सिंचाई वगैरह?
2: सिंचाई भी होती है दो तीन बार होती है सिंचाई भी, अगर बारिश आ रही नहीं हुई तो फिर सिंचाई करनी पड़ती है ना दो तीन बार।
1: हाँ हाँ
2: हाँ, अगर बारिश होगी तो एक दो बार हो जाता है।
1: हाँ हाँ, तो ये आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वैसे, पानी वगैरह की व्यवस्था?
2: सिंचाई की व्यवस्था कहीं कहीं जगह तो ठीक ही है, कहीं जगह नहीं है।
1: अच्छा
2: हाँ, जहाँ पे है तो वहाँ से ही होते हैं धान वगैरह ना।
1: हाँ,
2: जहाँ नहीं होते तो ऐसी बारिश के ही को देखे रहते हैं, तब जागे होते हैं धान वगैरह जो भी है दाल।
1: और दाल क्या बोल रहे? दाल भी बोलते, दलहनी फसल
2: दाल, आज दाल वो बोते हैं, फिर सोयाबीन।

0: दाल होगी, सोयाबीन की दाल होगी, उड़द की दाल होगी। हाँ, खेतों में धान लगाते हैं, उसके बगल पर वो लगाते हैं।
1: अच्छा, ये सोयाबीन वगैरह?
0: हाँ, वो उड़द वाली दाल। और मक्के होते ही है, मक्के भी बोते हैं आजकल, मक्के बोते हैं, बाजरा बोते हैं।
1: तो ये मक्का बाजरा कब तक तैयार होगा?
0: वही एक ही टाइम पे होता है, उसी समय सितंबर अक्टूबर में होता है वो भी।
1: हाँ। तो फिर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर जो ये नई फसल दूसरी क्या लगाओगे आप?
0: फिर गेहूं का आ जाता है फसल।
1: हाँ, तो उसके लिए फिर वही खेत की तैयारी वगैरह करते हो?
0: बस वही खेत की तैयारी, फिर उसको वो करो, बाओ, खोदो, गोबर डालो।
1: हाँ।
0: एक बार पानी भी डालो, फिर पानी सूख के उसमें गोबर वोबर मिला के गेहूँ और सरसों बो।
1: तो कोई कोई लोग, अच्छा सरसों हो ना, कोई कोई लोग क्या होता है ना, एक बार थोड़े टाइम के कभी कभी जमीन को खाली भी छोड़ते हैं ना, आप क्या भी करते हैं सर?
0: हाँ हाँ, खाली, अभी ये महीना खाली रहेगा ये। अच्छा। दो महीना में अभी अभी नहीं हो रखे ना खेत। हाँ, वैसे हाँ, खाली हो गए।
1: हाँ,
0: अभी धान के लिए तो एक महीना पूरा खाली रहेंगे खेत, हवा लगेगी उनको ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ, एकदम से जैसे काटा पीछे से ही बोते नहीं।
1: अच्छा हाँ, थोड़ा वो करते,
0: एक महीने का टाइम देते उनको खाली।
1: हाँ, क्यों करते हैं तुरंत नहीं बोते जैसे? तो इसका कुछ लाभ होता है, कोई फायदा होता है इससे?
0: फायदा होता है, फिर थोड़ा उसको मिट्टी और उसको हवा पानी से पक जाता है ना मिट्टी।
1: हाँ, थोड़ा आराम मिलता है कहते हैं ना,
0: आराम भी मिल जाता है उसको, थोड़ा उसको एकदम से उसको तुरंत नहीं बोते हैं पीछे से, एक महीना तो उसको देते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: आराम देते हैं ना मिट्टी को भी।
1: हाँ, वो ठीक है।
0: बाकी उसको हवा लग जाती है, धूप भी लग जाती है।
1: हाँ हाँ, ठीक है,
0: तब जाके मिट्टी अच्छी हो जाती है।
1: वो तो अच्छी बात है। तो आपके घर में सब लोग करते हैं खेती या एक
0: दो लोग? हाँ, सभी करते हैं, हमारे गांव में सभी करते हैं, घर में भी सभी करते हैं।
1: अच्छा, सब मिलकर करते हैं ना?
0: हाँ हाँ, मिलके करते हैं सब, मिलजुल के एक आग, मिलजुल के सब एक दूसरे के मिलजुल के साथ में करते हैं।
1: और यूँ कहीं ना, जैसे कई आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है उसका रुझान जो है खेती की ओर को नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप?
0: उसके लिए जैसे हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं ना उसको, कितने बार बता के भी उनको नहीं है, उनका मन भी किसी बच्चों का तो है, किसी बच्चों का नहीं है ना इस खेती बाती पे मन।
1: लेकिन अपनी जमीन है तो आबाद करना चाहिए उसको।
0: हाँ, अपनी जमीन है तो उसको बंजर नहीं रखना चाहिए।
1: हाँ,
0: उसको जरूरी आवाज करनी पड़ती है।
1: हाँ, ये तो है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खेती से संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता अल्लापुल सुमेश्वर बैग श्रीमती पुष्पा केड़ा दगर करी गई है क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता साग सब्जी उत्पादन और धानक फसल पर सुनी, और इनर दगर बातचीत करने लग रही थी लता कपूर।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लापुर नंदलाल आर्या गाई हुई यो गीत सुनो। किसान भाई बहनियों, हमारे जो खेतपाती काम किसान भाई बहनियों आप लोग कर छा, तो यो हम एक परंपरागत ढंग ले खेतपाती काम करेगा जो कि विल उत्पादन और फसलों पर असर पड़ो। और पारंपरिक फसल उत्पादन में किसानों के कम लागत में उच्च जो उपज छू प्राप्त है, जेल की उनर आय में जो जो बढ़ोतरी है सके। और वी के दगर दगर जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन छन उन्हें उपयोग करवे, माटक स्वास्थ्य के बनाई धरण मिले, मदद मिले और लंब वक्त तक कृषि उत्पादन के हम इमें कर सकनू पारंपरिक ढंग। अगर जब ले हम कोई साग सब्जी उत्पादन करनू या अनाज उत्पादन करनू, तो यह अनेक प्रकार के लाभ ले हमार किसान भाई बहनों को मिल सकनी, जिसकी लागत में कमी। तो इमें ले अगर हम जो महंगे उर्वरक छन, अगर कीटनाशक छन, उन पर निर्भरता कम है, और अगर हम आप पारंपरिक ढंग काम कर लूँ, तो वी ले किसान भाई बहनों के खेती जो लागत छू उत्पादन करने में वो घट जाए और उत्पादन जो छू उनके फल मिलू। वी के डगर डगर डगर डगर जो माटक उर्वरक शक्ति छू बनी रहे, क्योंकि अगर फसल चक्र हम अपनानू जेल की एक फसल के बाद कुछ वक्त बाद माट के विराम दिवे, फिर दोहर फसलक तैयारी कर दूँ, येल की जो माटक जो उर्वरा शक्ति छू वो बढ़ी रहे। और वी के दगर दगर यह प्राकृतिक संसाधनों जिसकी पर निर्भर निहन, बल्कि पर्यावरण के कोई नुकसान ले निपुजल। और इमें जो हम देखने की जैविक खादक प्रयोग ज़्यादा हमारे किसान भवनी करनी, जेल की जैविक खाद जो छू वो माटक

गुण के बनाई रखनी। और व्हील कोई नुकसान ले हमारे खेत पात में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रासायनिक खादक प्रयोग अगर हम जब करनू खेत पात में, तो व्हील माटक जो उर्वरा शक्ति छू, उपज देने जो शक्ति छू कम है जे, और व्हील माठू माठ कने खराब ले है सको। तो पारंपरिक ढंगल जब हमारे किसान भवनी खेत पात करनी, तो हमें जैविक खादक प्रयोग जो छू वो ज़्यादा करी जा, जेल की माटक जो गुणवत्ता छू, उत्पादन क्षमता छू, वो हमेशा बनी रहे। तो ये तो हमूल बात करी छोताओ पारंपरिक ढंगल जो ले हम साग सब्जी उत्पादन करनू, इमें जब जैविक खादक प्रयोग हम करनू, तो व्हील जो ले उत्पादन हूँ, चाहे साग सब्जी उत्पादन छू या अनाजक उत्पादन छू, जो ले उत्पादन हमारे किसान भैवणी करनी, वीक मांग बाजार में बहुत ज़्यादा है। जेल की आप लोगन के जो हमारे किसान भैवणी छन, उनके भल मुनाफले मिल सको, क्योंकि जैविक खादल जो ले उत्पादन हूँ, मानी जा कि स्वास्थ्य के लिए बहुत भल मानी हूँ। तो यह कह लीजिए, जितु ले ज़्यादा आप लोग जैविक खादक प्रयोग कर लो, व्हील उत्पादन करी हुई हर जो साग सब्जी छू या जो ले उत्पादन आपू कर छा, वीक आपू के भल दाम ले मिल सकनी, और वीके दगर दगर आपू माटक जो गुणवत्ता छू वो हमेशा बनी रहे। और श्रोता, अब कार्यक्रम में अखिन आपू के सुनानू बीना तिवारी गाई हुई योग गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लाह फूल पीना तिवारी गाई हुई यह देवी गीत सुनो। यह के दगड़ हमारे आजक ग्राम जगत कार्यक्रम इतने के संपन्न हो। कार्यक्रम में आपू दगड़ फिर भेंट करो। तब तक आपू दगड़ी लता कपूर के आज्ञा दियो। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।

0: पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंचाई और कृषि विभागक भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कामों का निरीक्षण करो। और चमोई जिला में गोविंद घाट बटी पंज प्यारों की अगुवाई में पहली जत्था हेमकुंड साहिबक लिजी रवाना। भूल खुलल कपाट। अब समाचार विस्तारल। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज बटी 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू है गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल टी ऑफ करबेर प्रतियोगिता का शुभारंभ करो। 3 दिनों तक चलना है यह प्रतियोगिता में अलग अलग श्रेणियों के 179 गोल्फर हिस्सा लेने। यह सालक प्रतियोगिता प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी की स्मृति के समर्पित करी गई छू। शुभारंभक मौके में राज्यपाल को कि गोल्फ धैर्य अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करण वाल खेल छू और प्रधानमंत्री फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के अखिल बढ़े बेर जवानों को नई दिशा देना।
1: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए खेलो इंडिया और उनका विजन कितना सुंदर है। जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा, तो आपकी जो खुद की भी प्रगति होगा विकास होगा वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग के भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। यह मौक में मुख्यमंत्री को कि आज जवानों को मिलने वाले नियुक्ति पत्र यह बातक प्रमाण छू कि राज्य सरकार उनर स्वर्णों को पुर करना है। उन्होंने को कि नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली जवानों की मेहनत लगन और संकल्पक सम्मान छू। मुख्यमंत्री को कि राज्य सरकार देशक सबू है सख्त नकल विरोधी कानून लागू करो जैक परिणाम शामिल में उड़िन। उन्होंने को कि आज नौकरी में चयन मेहनत प्रतिभाल होना और यह नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड सबू है ठुल ताकत बनाए।
2: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
0: प्रदेशक अलग अलग जिलों में प्रशासन और पर्यटक विभागक दगड़ जांच में भौते यस होम स्टे शामिल में आई छिन जो निर्धारित नियमों के उल्ट होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसी संचालित करी जानिन। जिला प्रशासन और पर्यटन विभागल इके गंभीरता से लेवेर निकायों को उल्लंघन करण वाल होम स्टे और पंजीकरण निरस्त करी हालिन। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्यालल को कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अगिल्ले सख्त कार्रवाई करी जाल। उन्होंने बता कि राज्य मंत्रिमंडल होम स्टे के बढ़ावा देने के लिए 8 कमरों तक आवासों को ले योजना के भीतर आवेदन अनुमति दी रहे, तब ले सबू के लिए पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी छू।

0: होम स्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होम स्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होम स्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होम स्टे चला रहे हैं, तो उनको BNB के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील आज देहरादून जिला सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलनवाल विकास और सुरक्षात्मक कामों का स्थलीय निरीक्षण करो। यह बीच उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग अधिकारियों को आने वाली बरसात को ध्यान में धरवे प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कामों को प्राथमिकता के आधार में जल्दी पूर्ण करने का निर्देश दें। जेल की स्थानीय मैसों को कुल प्रकार परेशानी सामना नहीं करण पड़ल। कैबिनेट मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा की स्थिति जायजा ले और अधिकारियों को तुरंत यह चैनलाइजेशन का काम शुरू करने का निर्देश दे। उन्होंने कहा कि बरसात है पहली जरूरी सुरक्षात्मक कामों को समयबद्ध तरीका पूर्ण करण बहुत जरूरी छू ताबे भविष्य में कैले प्रकार आपदा से होने वाले नुकसान को कम करी जा सकल। श्री जोशील सरखेत में आपदा मलबा चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कामों के लिए विधायक निधि बटी 5-10 लाख रुपए तक धनराशि दिलाने की बात ले कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर गंभीर छू और जनहित से जुड़ी कामों में कशीले प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: चमोई जिला में स्थित हेमकुंड साहिबक यात्रा के लिए आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों के मिठ धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहली जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट बटी हेमकुंड साहिब के लिए रवाना है गए। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक सेवा सिंघल कौ की यह जत्था आज रात घांगरिया स्थित गुरुद्वारा में आराम करल। यह एक बात भूल हेमकुंड साहिब कपाट श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए खोली जल।
3: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
1: वह हेमकुंड साहिब यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर बहुत खुश दिखेणी। यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने वास्ता जिला प्रशासन और पुलिस तरफा बटीले बहुत भल इंतजाम करी गई छिन। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मैणक स्टाफ बैठक में अलग अलग विभागों की प्रगति की समीक्षा कर बीर अधिकारियों के बगत पर पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनाने का निर्देश दी। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्था, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों के निस्तारण सहित अलग अलग विभागीय योजनाओं की समीक्षा ले करी गई।
4: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDM तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के सभी के साथ में बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
1: आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंटक शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंचाई और कृषि विभागक भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों चलनवल विकास और सुरक्षात्मक कामों का निरीक्षण करो। और चमोई जिला में गोविंद घाट बटी पंज प्यारों अगुवाई में पहली जत्था हेमकुंड साहिब क्लिजी रवाना है गये भूल खुलल कपाट। एकादगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। संध्या के समय ये सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म से। गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं एक्शन रिप्ले फिल्म में दलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा और मास्टर सलीम को इरशाद कामिल के बोल हैं और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

0: जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आप सुनते हैं एजेंट विनोद फिल्म में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत। धुन तैयार की है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में श्रोताओं आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति बाबुल सुप्रियो की आवाजों में अग्नि साक्षी फिल्म का गीत। समीर का लिखा गीत है और

इसी गीत के साथ श्रोताओं आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कव्वाली के साथ। कलाकार हैं नुसरत फतेह अली खान, मुजाहिद मुबारक अली खान और साथी।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, आप सुनते हैं चंदन दास को।

आपका प्यार मिला तो संवर जाएंगे, ये बोल थे मदन पाल के और स्वर था चंदन दास का। कार्यक्रम के अगले चरण में आइए सुनते हैं प्रीति और पिंकी को।

नदीम परमार का एक कलाम अभी आपने सुना जगजीत सिंह के सर में। इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज की। ईस्ट बंगाल ने 22 वर्षों बाद इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हुई। और हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। स्वीटी कुजूर को सौंपी टीम की कमान। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने। इस समय ताज़ा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे। इस मैच से पहले कल अहमदाबाद में मेज़बान गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज कर चेन्नई के प्लेऑफ में पहुँचने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। आइए सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात टाइटंस ने बेहद शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने 74 गेंद में 125 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। गिल ने 37 गेंद में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 64 रन की पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने जॉश बटलर के साथ पारी को संभाला। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 36 गेंद में 82 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन आउट हुए, जिन्होंने 53 गेंद में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 84 रन की सधी हुई पारी खेली। जॉश बटलर ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंद में 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद टीम बिखर गई। ऋतुराज ने 16 जबकि शॉर्ट ने 24 रन की पारी खेली। कार्तिक शर्मा भी महज 19 रन ही बना सके। टीम ने 63 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे। शिवम दुबे ने डेवाल्ड ब्रेविश के साथ 21 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे 17 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 13 ओवर 4 गेंद में 140 रन पर सिमट गई। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसोर अबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को धारदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही गुजरात ने शीर्ष दो में फिनिश करने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल में हर जीत और हर हार इस प्रतियोगिता को रोमांच के शिखर पर ले जाती हुई। और अब अहमदाबाद के बाद रुख करते हैं झारखंड की रांची का, जहां पर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस समय अपने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के साथ सज चुका है 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के लिए, जिसकी आज शुरुआत हुई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से आज प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला।
2: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: आज के दिन खेली गई प्रतियोगिताओं की स्पर्धाओं के रिजल्ट महविश ने बताए, और अब महविश हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। महविश, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने रिजल्ट्स का तो जिक्र किया ही किया, बड़ी प्रतियोगिता है, कॉमनवेल्थ के टिकट

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे

0: से मिलेंगे खिलाड़ियों को, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी और सितारे हैं जो इस बार प्रतियोगिता में मेडल्स के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे?
1: जी हाँ, यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और बहुत बढ़िया खिलाड़ी शीर्ष एथलेटिक ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इनमें है भारतीय स्प्रिंट स्टार अनिमेश कुजूर हैं, अनु रानी हैं, तेजस शिरसे हैं, श्रीशंकर एम हैं, और सचिन यादव हैं, शैले सिंह, प्रवीण चित्रवाल जैसे कई बड़े नाम यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
0: जी महवेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताया जिन पे नज़रें रहने वाली हैं आने वाले इन चार दिनों में जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी। और अब एथलेटिक्स के बाद रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां पर कल एक बार रोमांच और इतिहास का संगम देखने को मिला। ईस्ट बंगाल ने कल 22 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए इंडियन सुपर लीग ISL 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया।
2: Indian football, your champions this season are East Bengal. Unboxed, unlocked, unchained, like never before. Indian Super League winners for the first time.
0: एक रोमांचक फाइनल में ईस्ट बंगाल ने कोलकाता में इंटर काशी को 2-1 से हराकर 2004 के बाद इस वर्ष ये खिताब अपने नाम किया है। सुनते हैं जोश, जज्बे, रोमांच और भावुकता से भरे इस मैच की हर डिटेल।
3: कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में कल रात मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही पूरा स्टेडियम रोमांच और भावुकता से भरे माहौल में बदल गया। खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए, फैंस हैरानी में एक दूसरे से गले मिलने लगे और भरे हुए एरिना में ईस्ट बंगाल के नारे गूंजने लगे। मोहम्मद राशिद 72वें मिनट में अहम गोल करके हीरो बने। इससे पहले यूसुफ अज्जारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर ईस्ट बंगाल की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर किया। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटरकाशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटर काशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इस जीत से ईस्ट बंगाल 13 मैचों में 26 पॉइंट्स के साथ ISL टेबल में टॉप पर रहा। मोहन बागान सुपर जायंट ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी 2-1 के स्कोर से जीता और पॉइंट्स में बराबरी पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल के 5 गोल के बेहतर अंतर ने आखिरकार क्लब का नेशनल लीग टाइटल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वाकई देखने लायक पल था जब खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फैंस भी जिस तरह भावुक नजर आए एक दूसरे से गले मिलते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाली इस प्रतियोगिता में टीम की कप्तान स्वीटी कुजूर होंगी। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
4: भारतीय टीम भोपाल में नेशनल कैंप में कई हफ्तों की तैयारी के बाद टूर्नामेंट में उतर रही है, जहां रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने तालमेल, फिटनेस और तकनीक के सभी पहलुओं पर भरपूर काम किया है। अगर टीम की बात की जाए तो महक परिहार और खिली कुमारी को बतौर गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है, जबकि सुगन सांगा, नीलम टोपनो, रुबीना बक्सला, किरण एक्का और सुलोचनी डिफेंस का मोर्चा संभालते नजर आएंगी। मिडफील्डर के तौर पर श्रुति कुमारी, दिया, स्नेहा दावड़े, रश्मिन कौर, निम्मी गीताश्री और पुष्पा मांझी टीम का हिस्सा हैं। वहीं नौशीन नाज कप्तान स्वीटी कुजूर, प्रियंका मिंज, संदीपा कुमारी और नैन्सी सरोहा अटैक ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत को प्रतियोगिता में पूल ए में कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 मई को मलेशिया के खिलाफ करेगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: देखना होगा कि ये युवा टीम एक लंबे अभ्यास और कई मैचों में पसीना बहाने के बाद किस तरह इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। 23 ग्रैंड स्लैम और 100 से अधिक खिताब जीतने वाले टेनिस की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का आज जन्मदिन है। 22 मई 1987 को जन्मे सर्बियन खिलाड़ी ने टेनिस की दुनिया के हर एक बड़े खिताब को जीता है। उनके जन्मदिन पर उनके संदेश को जरूर सुनना चाहिए जो हर युवा खिलाड़ी को मैदान पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाठ पढ़ाता है।
5: द मैसेज रियली फॉर एनी यंग टेनिस प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड हु इज ड्रीमिंग टू बी हियर वेयर स्टेफनस एंड आई एम, ड्रीम बिग, डेयर टू ड्रीम बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट लेट एनीबॉडी टेक अवे द ड्रीम, डजंट मैटर where you're coming from. I actually think that the more disadvantaged childhood you have, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. And

0: Don't really let anybody take away that dream from you. Nurture it, water it like you water the flowers. Even if you find only one person in this world that will accept, embrace, and support your dreams, find that person and dream big, because you can make it.
1: एक दिग्गज खिलाड़ी जिसने सपने देखे और टेनिस के कोर्ट पर हर सपने को पूरा होते हुए भी देखा, अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं अपने मजबूत हौसलों से चुनौती की हर ऊंचाई लांघने वाले प्रवीण कुमार की। विश्व के नंबर एक पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने 2024 पैरालंपिक्स खेलों में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। प्रवीण को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
2: हिम्मत की ऊंची छलांग, प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। 15 मीटर दूर, दो पोल्स पर टिका 4 मीटर का क्रॉसबार। बरसों की मेहनत, सिर्फ एक मिनट और एक चांस, और पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ आप पर। आसान नहीं है ना? प्रवीण कुमार का जन्म सन 2003 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। बचपन में वॉलीबॉल खेलते खेलते प्रवीण ने हाई जंप की ऊंची छलांग लगाकर हर मुश्किल को चुनौती देने की ठान ली। स्कूल में जब टीचर ने प्रवीण को चोट लगने के डर से हाई जंप में भाग लेने से मना किया, तो वो 8 दिन तक टीचर से जिद करते रहे। टीचर को मानना पड़ा और 10 बजे के इवेंट में 8 बजे इनका नाम लिखा गया।
3: सबको लगा पैर में प्रॉब्लम है, मैं 2-3 फीट से ज्यादा क्या ही कूदूंगा।
2: प्रवीण ने उस कंपटीशन में गोल्ड जीता, वो भी एबल बॉडीड कैटेगरी में।
4: छोटा था तो उसको जैसे बाजार लेके गई तो उसको बाबा मिले, तो बाबा ने पैर देखा, बोले कि बेटा ये तो तामे के पैरों से है, बच्चा ये तो देश का नाम रोशन करेगा।
2: प्रवीण के हुनर को बेहतर दिशा और रफ्तार मिली जब इन्हें इनके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिले।
5: हाई जंप करने के लिए इंसान की हाइट और लेग स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास दोनों ही नहीं था। फर्स्ट डे जब मेरे पास प्रवीण आया तो वो उसने 1.80 मीटर बिना टेक्निक के क्लियर किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि प्रवीण रिकॉर्ड बनाएगा भी और रिकॉर्ड तोड़ेगा भी।
2: अब लक्ष्य था इंडिया के लिए गोल्ड लाना, लेकिन 2019 प्रवीण के लिए सबसे मुश्किल रहा। एक तरफ उनकी इंजरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गेम की कैटेगरी भी चेंज हो गई थी। प्रवीण 1 साल के लिए दिन रात बस मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी।
3: मुझे बस एक चीज याद थी कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसकी कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है।
2: प्रवीण ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक भी जीता।
3: अब मैं आने वाले खिलाड़ियों को बताता हूँ कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं मेडल के लिए नहीं खेलता, खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना पसंद है।
2: प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026, कोटि-कोटि नमस्कार।
1: स्पोर्ट्स कैन भी नमस्कार करता है उन खिलाड़ियों को जो मेडल के लिए नहीं खेलते, जो खेलते हैं इस देश के लिए, इस देश के मान के लिए, उससे जुड़े गौरव के लिए। ऐसे ही एक खिलाड़ी और हजारों युवाओं की प्रेरणा प्रवीण कुमार। और अब एक बार चलते चलते रुक करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का, जहां आईपीएल का एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, 13 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर के 162 रन बना चुकी है। और हेनरिक क्लासन इस समय 16 गेंदों पर 34 और ईशान किशन 26 गेंदों पर 38 रन बना करके अपनी पारी को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, खेल के मैदान के तमाम अपडेट के साथ। आप अपनी राय और अपने सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय।

0: आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के

0: बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिएं और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिएं या ORS पिएं। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए आप सुनते हैं मन्ना डे लता मंगेशकर को फिल्म चोरी चोरी में। शैलेंद्र करी का गीत है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं एक बार फिर मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म का नाम है संगम।

संगम फिल्म के इस गीत के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

अगर कानों में सुनाई दें तो सुकून के मार्फत नींद का रास्ता तय होता है। आपके फरमाइशी गीतों को हम ज़रूर आपको सौंपेंगे, उससे पहले बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। तकनीकी रूप से इसकी परिभाषाएं, इसके तमाम नियम कायदे अलग अलग तरीकों से समझाए जा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, पर आज के दौर में इंसानियत के नाते हमें सतही तौर पर और गहराई के तौर पर ये समझना होगा कि ये धरती केवल इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती में इंसानी जीवन तभी संभव हुआ है जब इंसानों के साथ साथ तमाम तरीके के जीव जंतु, चाहे वो दिखते हों चाहे वह न दिखते हों, उनका एक समुच्चय, उनका एक कॉम्बिनेशन, उनका एक बैलेंस्ड फॉर्म हमारे बीच है। छोटी से छोटी जीव जो हमें न दिखते हों, उससे लेकर विशालकाय जीव तक, विशालकाय वृक्ष तक, हर किसी का एक उपयोगिता इस ज़मीन में होने की है। आप देखिए ना कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह काई होती है, काई यानी हरियाली, हल्के हल्की किसी दीवार पर, किसी ज़मीन पर अगर सीलन हो या हल्की सी नमी हो तो उस पर काई उभरने लगती है, और ये काई, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लाइकेन कहते हैं, यह निशानी है कि उस जगह अभी तक प्रदूषण नहीं हुआ है। ये मिसाल है कि किस तरह छोटे से छोटा जीव इस धरती पर अपने होने की उपयोगिता दिखाता है। पर औद्योगिक क्रांति के बाद इंसान ने भौतिकता में जैसे जैसे वृद्धि की या भौतिकता की आकांक्षाओं में वो आगे बढ़ा, उसने ये अहम पाल लिया कि धरती सिर्फ उसी की है और तमाम तरीके के प्राकृतिक संसाधनों का उसने दोहन किया। यह समझ अब बन रही है जब प्राकृतिक पर्यावरण को हम बहुत हद तक प्रदूषित कर चुके हैं। ये सारी बातचीत बहुत गहरी और बहुत विषय परक है, लेकिन आज के दिवस का सीख, आज के दिवस का सार यही है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ अनेकों चिड़ियाएँ मौजूद हैं, वहाँ अनेकों कीट मौजूद हैं, वहाँ अनेकों जानवर मौजूद हैं। हर जानवर की, हर जीव की, हर वृक्ष की, हर फूल पत्ती की अपनी एक उपयोगिता है, तो उसको किसी भी तरीके से उसके जीवन को खतरा न पहुँचाएँ। इसी में इंसान होने की एक उपयोगिता है। इंसान होने का मतलब है करुणा, दया, त्याग और समझ। तो करुणा की समझ के साथ, पर्यावरणीय समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। और इस सीख के बाद कार्यक्रम का पहला गीत आपको पेश कर रहे हैं। आप सबकी फरमाइश पर लाला बाजार से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, माही, नीलोफर, शन्नो और सबो, कोस्तो बस्ती पुना से हैं अजय सोनवने, करिश्मा अविना, विशाखा शायसा, गणेश अविका, और श्रीरामपुर से हैं डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका और सानू कुंभार। सब तरंग श्रोता परिवार से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका। पुनावल उणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा। आइए सुनते हैं दम लगा के आयशा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के सभी सुधी श्रोताओं को आपके दोस्त नीरज भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। ढलती शाम खामोशी बढ़ती जाती है और ऐसे में अपने फरमाइशी

श्रोताओ, कार्यक्रम के अगले सोपान में अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत, सोनम वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। झारखंड बड़ा बॉम्बो सुपाई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती। तो आइए, आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान, तुलसी कुमार, नदीम खान की आवाज़ों में शब्बीर अहमद के बोल। धुन तैयार की है अमजद नदीम ने और फिल्म का नाम है जिला गाजियाबाद।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। आपके फरमाइशी गीतों के साथ मैं हूं आपका दोस्त नीरज भट्ट। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर ग्राम पलना ब्लॉक लमगड़ा अल्मोड़ा से हमारे श्रोता साथी हैं पुष्कर बिष्ट। कीकरमेटा बेलाहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर, ये श्रोता साथी हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और इनके बहुत सारे दोस्त इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति, संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश और शीतल राजेश। रिंगनी छत्तीसगढ़ से श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं सिद्धार्थ महादेवन, शिल्पा राव और साथियों को। समीर का लिखा गीत है, धुन तैयार की है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है धूम

न्यू इंदिरा कॉलोनी अल्मोड़ा से हमारे श्रोता साथी हैं दीपक नगरकोटी। यहीं से हैं मनोज तिवारी, राजेंद्र लटवाल, सुंदर नयाल, ललित जोशी, मुकेश जोशी, नीरज जोशी और इनके बहुत सारे दोस्त। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भोईवाड़ा पैठण से शेख चांद, शेख गुफरान, फुरखान, जकिया शेख और खुशी मोरवे, फ़हीम मोरवे, आशमा और खिजर मोरवे। मुक्कम पोस्ट, फूल चिंचोली, तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और इनका पूरा परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सब की फरमाइश पर लुटेरा फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है स्वानंद किरकिरे अमिताभ भट्टाचार्य ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है और धुन तैयार की है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आप सबकी फरमाइश पर अगला गीत रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से के शरद पाचपुर, शोभा वैदेही, विहान, रश्मि, अक्षय और अभिनव, व्हाइटफील्ड बेंगलोर से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति, पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र और कुलदीप कमल, जमशेदपुर झारखंड से सुपाही, साही, निशा, रेशमा, देबिन, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। आप सबकी फरमाइश पर सोनू निगम के आवाज़ में स्ट्राइकर फिल्म का गीत, जिसे लिखा है जितेंद्र जोशी ने और धुन तैयार की है शैलेंद्र बर्वे ने।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त नीरज भट्ट को दीजिए आज के कार्यक्रम से अनुमति। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त इन्हीं मीटर्स पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन के स्वर में ये सूफियाना प्रस्तुति।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनवा रहे हैं अक्रम वारसी। साहिल का कलाम, स्वर है मिताली सिंह का।

मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मोनी बेगम को श्रोताओ अभी आपने सुना, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले ये महत्वपूर्ण संदेश।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं, आइए सुनते हैं जफर गोरखपुरी का कलाम स्वर है पंकज उदास का।

पंकज उदास को अभी आपने सुना। श्रोताओं, इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM बैंड 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के ये शुरुआत में। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में यंगिस्तान फिल्म का ये गीत। कौशर मुनीर ने इस गीत को रचा है और संगीत की धुनों में संवारा है कुमार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं आशिकी टू फिल्म में पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह को इरशाद कामिल का लिखा गीत है और धुन तैयार की है जीत गांगुली ने।

हाईवे फिल्म में अभी आपने सुना सुनिधि चौहान को, इरशाद कामिल का लिखा गीत था और सरगम में इस गीत को संवारा था AR रहमान ने। कार्यक्रम के अगले सोपान में श्रोताओं आइए सुनते हैं बेशरम फिल्म में अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में राजीव बर्नवाल का लिखा गीत, धुन तैयार की है ललित पंडित ने।

श्रोताओ, अनजाना अनजानी फिल्म में अभी आपने सुना मोहित चौहान और शेखर राजवानी को। कुमार और विशाल ददलानी के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत निर्देशन। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं एक बार फिर नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर की शब्द रचना। गीत को आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम ने। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

0: दिल है तुम्हारा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग

0: बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए ITBP की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने ITBP के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
4: Aaj humne साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।